ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरे हो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था, अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली, आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो, याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे, अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना, ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है, चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है, यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए,
धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है। गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है, उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली, अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है? होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहे रूप समुद्र गाद, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। तो हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे।
खत्म खेल अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है, वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, ऐ मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा
प्रवेश हो गया है, अब चूकिए मत। मां मुनिश्मर बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।

भाग जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। जैसे अपार महिमा, देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हैं, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीत

आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है। ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए अब भी पार हो जाएंगे। नहीं।

पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या है? तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती है तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का

चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंजू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेरण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल

0: छाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप सबके बीच तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं बिलोंग नहीं करते, जैसे सब कुछ अपना होते हुए भी थोड़ा अनफैमिलियर सा लगता है। आज इसी फीलिंग को समझने के लिए हमारे साथ हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी। आप दोनों का शो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: ज्योति जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इस दुनिया के पार्ट होते हुए भी इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और स्पिरिचुअलिटी इस फीलिंग को किस नजरिए से देखती है?
1: ये एक्चुअल में उन लोगों के साथ ज्यादा रहता है जो अपनी एक दुनिया बना के रखते हैं,
0: जिसको
1: कह सकते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये सब रियल नहीं है, कुछ अपनी कहानियों की दुनिया, जैसे
0: दिल्लू वर्जन का।
1: तो वो कहानियों की दुनिया वालों को लगता है कि नहीं, ये सब जो भी है ये भी कुछ रियल नहीं है, ये मेरा अपना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने माइंड में कोई और दुनिया बना रखी है, उनके माइंड में तो कहीं और का चल रहा है। जैसे वो जो हमने एक मूवी देखी, जैसे भूल भुलैया की अगर हम बात करें, वो मूवी आई थी, तो उसके अंदर भी एक उन्होंने अपने आप को उस रोल के साथ इतना इन्वॉल्व कर लिया कि वो इस लाइफ में भी उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करना या उसी तरीके से देखना शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी होता है जो बहुत समय तक किन चीज़ों के साथ इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ों को, वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि नहीं, ये जितने भी लोग हैं चाहे वो नेगेटिव भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका मेरे साथ पास्ट का कोई रिलेशन है, इसलिए अगर इसने मुझे बोला है तो डोंट केयर, तो वो पॉजिटिविटी में आ गया। लेकिन जो लोग नेगेटिव एरा बना रखा है, जिन्होंने नेगेटिविटी के अंदर हैं, वो हर एक चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, और उनको ये लगता है कि ये मेरे अपने भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बड़े होने के बाद भी ऐसी चीजें बना लेते हैं, अपने आसपास ऐसा एक ऑरा बना लेते हैं, तो उनको वो सारी चीजें जो है वो इमेजिनरी ही लगती है, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है, उनकी अपनी एक सोच है जिस सोच में वो जी रहे हैं।
0: बिल्कुल। क्या ये फीलिंग हमारी अपनी आइडेंटिटी को समझने से भी जुड़ी हो सकती है? चलिए इसी पे बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स में हम खुद को एक सोल के रूप में समझते हैं, तो क्या अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूलकर सिर्फ बॉडी और वर्ल्डली आइडेंटिटी से खुद को जोड़ना इस फीलिंग की एक वजह हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, ये इसलिए हो भी सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इसीलिए ही होता है। ये हो सकता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको इस फिजिकल वर्ल्ड से बहुत ऊपर महसूस कराती है, इस बॉडी से ऊपर, इस वर्ल्ड से ऊपर, और बहुत एनर्जेटिक, पावरफुल एंड प्योर फील कराती है, जबकि ये दुनिया उस हिसाब से बहुत ही नीचे है, डिग्रेडेड है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये चीज मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं इस दुनिया के लिए, मैं इससे अलग हूँ, हटके हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन चीजों से अपने आप को डिटैच करते जाते हैं, क्योंकि कभी जिंदगी में मुझे उन चीजों से या उन लोगों से चोट मिली है, दुख मिला है, परेशानी मिली है, तकलीफ मिली है, और वो इतने लंबे समय तक चली है कि उसने, उस तकलीफ ने मेरे मन में एक जगह बना ली है, और वो जगह इतनी काम करने लगी है कि मुझे अपनी जगह की ही फीलिंग उस फैमिली में या उस घर में या उस जो भी माहौल में मैं हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। तो कई कारण इसके हो सकते हैं, और एक जो आपने खुद बताया है कि यस, वी आर नॉट फिजिकल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर जस्ट बीइंग्स, द सोल, हम आत्मा है। और अगर आत्मा है तो अगर ऐसी फीलिंग के साथ या स्पिरिचुअलिटी के साथ, मीनिंग के साथ अगर आप चलते हैं, तो आपको उस जगह से नफरत नहीं होगी, उस जगह से आप अटैच नहीं रहेंगे, तो आपको नफरत भी नहीं होगी, और आप बहुत एक स्टेबल रहेंगे।
0: और कभी कभी ये फीलिंग हमें अपनी लाइफ के पर्पस पर भी सोचने पर मजबूर कर देती है, तो क्या ये सवाल भी कुछ समझने का मौका हो सकता है? इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ, और शो चल रहा है नया नजरिया। ज्योति जी, जब किसी के मन में बार बार ये सवाल आए कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो क्या इसे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को समझने की शुरुआत माना जा सकता है?
1: हाँ, हो सकता है कि हमें उस तरफ भी जोड़ रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेटलिस्टिक चीजों को देखते देखते लोगों को एक खालीपन लगने लग जाता है कि ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक अंदरूनी खोज वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उस खोज को ही ढूंढते ढूंढते वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। हमने जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अचानक उनके अंदर कुछ ऐसा हुआ, ट्रिगर हुआ कि नहीं, अभी सब छोड़ देना है। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और तुरंत जो है वो कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कोई संन्यास की तरफ, कोई किधर चले गए। तो उनके पीछे रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं बहुत समय से उनको अंदर से एक आवाज आ रही थी कि भाई ये सारी चीजें जो हैं शायद इससे सुख नहीं है। वो जो सुख की तलाश, वो जो शांति की तलाश, क्योंकि एक्चुअल में आत्मा जो है वो सतोगुणी है। आत्मा में 7 क्वालिटीज हैं, जिन 7 क्वालिटीज के लिए वो आत्मा जो है कहीं ना कहीं वो ढूंढती है। वो 7 चीजें उसको चाहिए। जब उसको, कोई लोग तो उन्हीं चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत तीव्र इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट डिज़ायर होती है, नहीं मुझे उस शांति को ढूंढना ही है, और उसके लिए फिर वो टर्न हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो कई बार हमारी वो जो ये दुनिया सत्य नहीं है, या ये सुख सत्य नहीं है, ये शांति सत्य नहीं, जब वो देख लेते हैं कि मेटलिस्टिक चीज़ों में ये नहीं है, तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं और अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं।
0: आगे बात करेंगे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, क्योंकि समझने के साथ ये भी जरूरी है कि ऐसे वक्त में हम खुद को संभाले कैसे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, अगर किसी को बार बार ऐसा फील हो कि वो बिलोंग नहीं करता या आसपास की दुनिया अनरियल सी लग रही है, तो उस वक्त उसे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और क्या मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी इस फीलिंग को हैंडल करने में हेल्प कर सकती है?
1: बिल्कुल कर सकती है, लेकिन एक सीन जो हमें अभी ऐसे वॉबली आपको बताना चाहूँ कि मैं ऑफिस में हूँ और बहुत प्रेशर है। मैंने अभी सुबह बॉस की डांट खाई है, कलीग से भी जो मेरे सीनियर हैं बंस हैं उनसे भी मैंने कमेंट्स मैंने सुने हैं और बहुत मुझे बुरा लग रहा है। तो सडनली एक फीलिंग आ गई है कि आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो ये अलग सीन है। ऐसे में मैं क्या हूँ, मेरी क्षमता कितनी है, वो चीज़ मुझे देखनी है और उस अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्क प्लेस यू कैन, लेकिन जहाँ इस बात की फीलिंग आ रही है कि सडनली बैठे बैठे मुझे फील आया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, तो स्पिरिचुअल टर्म में उस वक्त हमें ये फील करना है, एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है जिसके नेचर में आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअल है, वो अगर इस फीलिंग को लेता है तो वो इसलिए नहीं लेता है क्योंकि मुझे आसपास के लोगों से नफरत हो गई है या मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे घुटन हो रही है। ये फीलिंग एक आध्यात्मिक जो पर्सनैलिटी है वो नहीं लेगा। जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगा वो ये फीलिंग सदा रखता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ सबके साथ मिलके चलना है, वो इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ता है।
0: तो दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन ने हमें याद दिलाया कि खुद को समझना और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू और आप सभी लिसनर्स का भी शुक्रिया। मैं पलक आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए नजरिए के साथ सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: यह निकाला ना तूने देसी मुर्गा, अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
1: थैंक यू।
2: यस, इट्स कंफर्म। हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
3: सर, R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में एक बैंड स्पोर्ट है।
2: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
4: Hey David, आजा जा, ऊपर आ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदा बाय। तो वीकेंड का काउंटडाउन हो गया है शुरू। आई नो फ्राइडे वाली एक्साइटमेंट अभी बाकी है, लेकिन तब तक के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज देना तो बनता ही है ना। तो भाई अंजलि ऑन एयर हो गई है, सुबह 7 से 11 बजे तक आपके साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें आज मैं लेकर आई हूँ। बॉलीवुड का तड़का मिलेगा यहाँ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, साथ ही हेल्थ और फिटनेस की बात भी होने वाली है, और साथ ही आपके शहर में आज मौसम का क्या हाल है, ट्रैफिक क्या कहता है, और साथ ही साइबर स्कैमर से खुद को किस तरह से बचाना है, ये सब बताने वाली हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाली चाय की गर्म गर्म सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: प्रोग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए. एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से. और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है. के साथ आइए, डांडिये के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट. स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है. बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285. एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग. यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं. किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस. ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन. The Warriors Club and Kickboxing. Special female trainers facility and kids friendly. Visit us at Sector 14, Faridabad. Call now 8766-22-0036.

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, फरीदाबाद से निकल कर चलते हैं थोड़ा सा बाहर। और जैसे मैं बाहर गई ना, तो मुझे ये पता चला कि जो चीजें हम एज इंडियन सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और जिनके हमारी बहुत ही यूनिक यूनिक नाम भी है, उन्हें ना बाहर के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब बात कर लो मम्मी की थाली की। हाँ, वही किचन वाली स्टील वाली थाली जिसमें हम ना सालों से दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल और कुछ भी खा लेते हैं। और कई लोग तो ना उसमें चाय भी पी लेते हैं, बिकॉज यार हम इंडियन ना बहुत जुगाड़ी होते हैं, और साथ ही ना कभी कभी इतना आलस भरा होता है कि कौन जाए ग्लास लेने। ये जो थाली है ना, मल्टीपर्पज वाला काम करती है। लेकिन जिस थाली को हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, और जिसका इस्तेमाल करते करते हम इतने ज्यादा बोर हो गए थे ना कि मम्मी को ये बोला कि यार अभी से रिजेक्ट कर दो, और ये जो फैंसी क्रॉकरीज आ रही है ना मार्केट में वो ले आओ। लेकिन आपको पता है, एक विदेशी महिला अमेरिकन विमेन ने स्टोर पर एक क्रोम प्लेट्स को देखा, और ना उसका दिल उस प्लेट पर आ गया। और उसका प्राइस पता है क्या था? 800 से 1500 रुपए पर प्लेट। जैसे उस लेडी ने देखा कि भाई ये तो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही, तो उन्होंने बोला मुझे दे दो। तभी दुकानदार ने बोला, मैडम जिसे आप क्रोम प्लेट समझ रही हो ना, ये हमारे घर की थाली है और हम सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी कि इतनी हाइप बना दी उस थाली की जिस थाली को हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मम्मी के दहेज में ना यही थालियां मिली थी, और आज तक मेरे घर में यही थालियां चल रही है। मेरी मम्मी इनको रिप्लेस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हैं, जिसकी वजह से ना मेरा घर कभी एस्थेटिक नहीं बन पा रहा। खैर देखिए, मेरा घर तो स्थैटिक नहीं बन पाया, लेकिन ये जो अमेरिकन लेडी है ना, ये अपना घर जरूर स्थैटिक बना लेंगी, वो भी हमारी थाली के साथ। और तब तक ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ, तो भाई सुनने पड़ेंगे ना ये गाने। तो सुनिए, मिलते हैं उस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

कई लोगों में ना एक चुल होती है और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है। और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलूज है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आजकल लेकर आई हूँ। तो आज का स्यापा ना हमें ये बताता है, कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कंप्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि आप ना सिर्फ काम पूरा करो यार, अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो। और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फे बालियां, गल्लां नाल जदों

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी एंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा? सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जी बिल्कुल, आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है, और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना क्या है, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान है आपकी, यानी कि सर्विस है आपकी। और आप ना इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेस मैन से कर सकते हैं मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वहीं किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई आज जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आपका क्लाइंट मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलूंगी आपसे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, टाइकवांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766 220036।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो bones के ऊपर mechanical stress आता है तो वो bone density maintain करने में overall help करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

तो चलिए फिर फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की ना बात ही अलग है भाई। बिहार में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो फनी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सो मैं लेकर आ गई हूँ सोशल स्यापा, और आज का स्यापा देखकर ना आप भी यही बोलेंगे कि वाह क्या किस्मत है ना, किस्मत हो तो इस चोर जैसी। दरअसल हुआ क्या, सोशल मीडिया पर ना इन दोनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी करने गया एक इंसान, लेकिन वहां ना हॉस्पिटैलिटी लेकर आ गया। बिहार से एक ऐसा वीडियो आया है जहां ना एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ा गया पहले, लेकिन गाँव वालों ने ना उसकी पिटाई नहीं की, बल्कि उसकी पिटाई करने के बजाय ना उसे पहले बिठा कर ना वहां पर खाना खिलाया, और फिर जाकर कहीं उससे पूछताछ की कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप इस गाँव में चोरी करने के लिए आ गए। तो भाई देखो, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है ना, इंटरनेट पर लोगों ने इस मोमेंट को बहुत शेयर किया है और बहुत सारे रिएक्शंस भी दिए हैं। रिएक्शन देते हुए ना लोगों ने ये भी कहा, अतिथि देवो भवा। और ये तो अतिथि देवो भवा का ना नेक्स्ट लेवल था। सो किसी ने यहाँ भी ये भी बोला है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, और लेकिन काम दूजा यहाँ पर तब भी नहीं हुआ, पहले पेट पूजा कराई गई और फिर बहुत ही प्यार से इन्हें जो है छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जोक अपनी जगह, लेकिन अगर आप किसी गलत काम को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये स्टोरी जरूर याद रखिएगा, किसी को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सबक हमेशा वायलेंस से हो। आप अपनी बातों से भी किसी को ये बता सकते हैं कि उन्होंने गलत किया। और इसी के साथ ही तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

जब से हम सबके लाइफ में सोशल मीडिया है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो भाई देखिए व्हाट्सएप पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना किसी को कितना इजी हो गया ना। सबसे पहले उसकी फोटो खींचनी है, सेंड करना है, डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका पैन, आधार या फिर आपके बैंक की कोई स्टेटमेंट है तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है? नहीं सोचा ना। और अक्सर ये सारी चीजें हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर देते हैं। तो देखिए आज का साइबर अलर्ट आपके लिए यही एक अपडेट लेकर आया है। कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट अगर किसी एजेंट या फिर एम्प्लॉय के पर्सनल फोन पर चले गए, डिलीट कभी नहीं होते हैं। उनकी कॉपीज फोन पर, गैलरी पर या फिर आपके क्लाउड बैकअप में हमेशा रह सकती है। इसलिए KYC के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अथॉरिटीज सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम को ही प्रेफरेंस दें हमेशा। कभी भी किसी को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। और अगर मैं बात करूँ ना आधार की, तो भाई आधार की तरफ से तो ये एडवाइजरी भी जारी की गई है, आधार को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो मास्क आधार जरूर बनवाएं, ऑप्शन में रखिए। बिकॉज मास्क में होता क्या है, आपके जो 8 डिजिट है वो हमेशा हाइड रहते हैं और जो लास्ट के 4 डिजिट है सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। सो इससे जो फ्रॉड का चांस है ना वो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोलता है कि अपना आधार और पैन भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो पता है ना आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और इसी के साथ ये था आज का साइबर मंत्रा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

हेलो हेलो जी। तो भाई देखिए, जितने भी सिंगल लोग हैं ना, अब आप मिंगल हो ही जाइए। बिकॉज पहले हम लोग ये सोचते थे ना, तो हम लोग, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ ना, पहले हम लोग ये सोचते थे ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद ना जेब ढीली हो जाती है, और वाकई ऐसा होता है क्योंकि अपने पार्टनर को डेट पर ले जाना, उन्हें गिफ्ट देना, ना जाने बहुत सारी चीजें होती है ना। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ भी ना इस चीज का एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं, और वो शॉर्टकट्स निकाल डाला इन जेंजीज ने। तो भाई जेंजी ने बना दिए हैं इन्फ्ला डेटिंग। अब आप ये सोच रहे हैं ना, आखिर इन्फ्ला डेटिंग है क्या? तो देखिए, इन्फ्लेशन प्लस डेटिंग से मिलकर बना है इन्फ्ला डेटिंग। यानी कि यहाँ ना आपकी पॉकेट पर बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ने वाला। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे इतनी एक्सपेंसिव कैफे में लेकर जा रहा है अपने पार्टनर को, इतना ज्यादा बिल आ जाएगा। खाना थोड़ा सा होता है, बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इस डेटिंग में करना क्या होता है, जितने भी जेंजी और मिलेनियल्स है ना, ये अपने एक्सपेंसिव डेट्स को कट बैक करने के लिए वॉक, पिकनिक या फिर घर पर कुकिंग करके ही ना एक कोजी सी डेट प्लान कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह से बजट फ्रेंडली होती है और ना बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज आप साथ में मिलकर कुकिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं। सो ये वाली जो डेटिंग है ना, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इन दिनों। सो भाई देखिए, ओवरऑल डेटिंग का आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इनकेस अगर मैं फ्यूचर में कभी किसी को डेट करूंगी ना, तो मैं इन्फ्ला डेटिंग ही करने वाली हूँ। सो आप भी ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर किसी ने किया है ना, तो मुझे जरूर बताएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और आपको बताना बताने के लिए कहां जाना है, तो फटाफट से आ जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर बताइएगा कि कैसा रहा आपका डेटिंग का एक्सपीरियंस। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी तो हो जाए। हाँ जी फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट, और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग।

स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

दिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं ना, पूरा दिन सोशल मीडिया चलाते हैं और फिर कहते हैं कि यार बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा खराब हो गया। यहाँ सिर्फ आज मैं बैटरी बैकअप की बात नहीं करूंगी, आज आपको ये भी बताने आई हूँ, अगर आप भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना तो हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ना हमें पोस्ट के साथ साथ ना कुछ एड्स भी नजर आते हैं। कुछ एड तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ना कि हम उन्हें क्लिक करके देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने ये एड क्लिक किया और आपका फोन हैंग हो गया और उसके बाद आपका अकाउंट खाली? नहीं सोचा था ना। तो देखिए भाई, ये नया स्कैम आ गया है मार्केट में, तो अगर आप किसी भी एड को देखते हैं तो उसे बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा, बिकॉज ग्वालियर में एक ऐसा केस सामने आया जहां पर इंस्टाग्राम पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक स्कैम हुआ है 98,000 का। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो विक्टिम है ना, पहले उनके अकाउंट से 70,000 रुपए डिडक्ट हुए, फिर 20,000 एंड देन 8,000, इस तरह से पूरा टोटल अमाउंट हुआ 98,000। सो इसलिए कहा जाता है कि सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्चुअल वर्ल्ड में दिखने वाली चीजें कभी भी रियल नहीं होती, इसलिए अननोन एड्स पर स्पेशली जो डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड या फिर अर्जेंट ऑफर का लालच आपको देते हैं ना, ऐसी चीजों से दूर रहिए, ऐसे एड्स को कभी भी क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से आप कभी किसी ऐसे सस्पिशियस लिंक को क्लिक भी कर देते हैं और फोन आपका हैंग करने लगता है ना, तो आपको पैनिक करने से पहले ना आपको अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, आपके जितने भी बैंकिंग एक्सेस है सबको सिक्योर कीजिए और साथ ही कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि साइबर सेल में आपको कंप्लेंट करने के लिए 1930 डायल करना है। और हमेशा याद रखिए कि जो इंस्टाग्राम है ना, जो सोशल मीडिया है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि हमारे अकाउंट को खाली करने के लिए। तो बस स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, कल रक्षाबंधन आ गया और ना आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कल रक्षाबंधन है तो क्यों ना जाके आज ही हेयर कट करा लो। तो भाई एक बार रुक जाइए, ठहर जाइए भाई, ठहर जाइए। कभी आपने सोचा है कि जब आप हेयर कट कराते हैं और दूसरे दिन आप कितने चंपू लगते हैं ना? आप वो कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, आपको ना हमेशा ये कॉमेंट जरूर करके जाते होंगे लोग कि भाई क्या क्या हेयर कट कराया है यार। तो देखिए भाई, यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो बात आपको नहीं पता थी वो मैं आज बताने आई हूँ। एक्सपर्ट्स एंड जितने भी स्टाइलिश है ना, वो पता क्या कहते हैं, कॉमनली सजेस्ट करते हैं कि किसी भी इम्पोर्टेंट फंक्शन या फिर जितने भी गेट टुगेदर्स होते हैं ना, उनसे कम से कम कुछ दिन पहले, आइडली अराउंड 5 से 7 दिन पहले हेयर कट कराना चाहिए। बिकॉज जब आप हेयर कट कराते हैं ना, तो एक हफ्ते में ना आपके बाल जो है पूरी शेप ले लेते हैं, पूरे डिजाइन में आ जाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो और ज्यादा इनहेंस दिखता है और आपके बाल सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माचो मैन वाला स्टाइल है ना वो उभर कर आता है। लेकिन कई बार ना हम ये गलती कर देते हैं, कई बार बहुत जल्दी में बाल कटवाते हैं और अगर वो बाल बहुत खराब कटते हैं ना, तो भाई देखिए आपका हो जाता है पूरा लुक खराब। ये बात नहीं बता दी ना तभी मैं ये बात लेकर आई हूँ। बिकॉज अगर बात करूँ ना मैं मेंस की, तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाई, इसीलिए मेंस ग्रूमिंग डे मनाया जाता है कि एटलीस्ट एक मॉइस्चराइजर खरीद लो जब आप बहुत एक्सपेंसिव शूज खरीदते हो। तो देखिए, आज अगर बाल कटवाने जाने वाले हो ना, तो प्लीज मत जाना यार। आज मत जाना, रक्षाबंधन इन्हीं बालों में सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद कट करा लेना। क्योंकि रक्षाबंधन की फोटोज अगर इन बालों में आई ना, तो बहन ने आपकी इवेंट बजा देनी है और अच्छा लगता है क्या पिटते हुए। तो इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, और हाँ बने रहिए रेडियो भानानी 89.6 FM के साथ।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

यार कहाँ है वो लोग जो छोटी लड़कियों को देखकर सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई ये तो किसी पोकेमोन से कम नहीं है। कहाँ है वो जिराफ जैसे लोग? बिकॉज उन लोगों के लिए ना आज मैं इतनी बढ़िया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ ना, जिसे सुनने के बाद ना भाई साहब आपको आपके लंबे होने पर अफसोस होगा। और आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है ये स्टोरी बताते हुए, क्योंकि यार अभी तक ना आपने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है। जिस दिन आप मुझे देखेंगे ना तो आपको शायद यही लगेगा कि मैं अभी भी ना 11th 12th क्लास की एक बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है। और कम हाइट होने का मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, नहीं। तो भाई देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जो नहीं करते हैं ना यार, अपने आप से प्यार करो। सो जितने भी शॉर्ट गर्लीज हैं जो मुझे सुन रही है, जरा सा वॉल्यूम तेज कर लो, क्योंकि यार इंटरनेट पर ना इन दिनों आपके फेवर में इंटरेस्टिंग क्लेम वायरल हो रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जितनी भी शॉर्ट गर्ल है टॉल गर्ल के कंपैरिजन में स्वीटर, स्मार्टर और ज्यादा केयरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है ही नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इस छोटे से पैकेट में ना बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है और बहुत सारा फन भी है। सो जितने भी अभी तक बड़े लोग ये अपनी हाइट पर इताते थे ना यार, किसी काम की नहीं है आपकी हाइट। क्योंकि अगर आपको किसी से बचना होता है ना तो आपकी हाइट इतनी बड़ी है कहीं छुप नहीं सकते आप लोग। लेकिन हम जो छोटे हाइट वाले लोग है ना यार, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की स्टडी मुझ जैसे छोटे लोगों के लिए थी, यानी कि जो हाइट में छोटे हैं। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज आज मुझे सुन रही थी ना, फाइनली ये स्टडी हम लोगों के लिए आ गई है। तो अब फ्लेक्स करना तो बनता है ना। तो आपके जितने भी लंबू फ्रेंड्स है ना, बस आज वाली स्टोरी ना इन्हें सुना दीजिएगा और इन्हें बताइएगा कि बेटा आपकी जो लंबी हाइट है ना सिर्फ दिखाने के लिए ही है, इसका काम कुछ नहीं है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलते हैं कुछ ही देर में।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजन हार सिंह बल्लभगढ़।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए नहीं 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: एक छोटा सा ब्रेक है।
1: तो हेलो,
2: गेट रेडी फरीदाबाद, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एरिया द बीट्स ऑफ डांडिया, डीजे और ढोल आर कमिंग टुगेदर फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट।
3: क्लोरेक्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट क्लोरेक्स गरबा नाइट, 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
2: वेन्यू पार्टनर इमेंस रेजिडेंसी होटल, सेक्टर 28 फरीदाबाद। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: सपोर्टिंग पार्टनर्स आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद, स्टूडियो 1 डांस एंड फिटनेस।
2: राइट पार्टनर वोक वुमेन ऑक्यूपाइड कार्स, स्पोर्ट पार्टनर नॉट आउट, हेल्थ पार्टनर अजयवेदा, सिक्योरिटी पार्टनर बिग पैंथर,
3: डीजे ढोल डांडिया नॉनस्टॉप गरबा। सो गेदर योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर गरबा गैंग,
2: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है फुल ऑन गरबा नाइट।
4: झमझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा।
3: टिकट्स अवेलेबल हैं ऑल इवेंट्स की साइट पे, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9311304040 पर।
2: ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026, इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, डीजे की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

चलिए भाई फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी है। लेकिन आपको पता है टाइम ने सब कुछ हील कर देता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं, और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखिएगा 4 हफ्तों के बाद आपकी डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेने हैं, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है, आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है। साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा, क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ कुष्मांडा को क्रिएशन और पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन नेगेटिविटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ है तो वो अपने आसपास और अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से करे?
1: कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसका बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके विचार ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हैं तो बाहर से उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर के स्पेस को शुद्ध कीजिए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। दिन की शुरुआत में कुछ देर मौन बैठना, उन चीजों को, उन लोगों को कृतज्ञ भाव से देखना जो आपके पास है, और अपने विचारों को नई दिशा देना। जब आपका भीतर का आकाश साफ हो जाएगा तो बाहर का अंधकार अपने आप छटने लगेगा।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नए मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

0: आपका तो पता नहीं यार, पर मेरे लिए ना आज का दिन बहुत ही बोरियत भरा रहा है। पता नहीं क्यों यार, आज सुबह में ना बहुत बोरियत सी थी। अगली बार ना मन करता है कि कुछ मत करो, आज ना मेरा वही मन हो रहा है। आज मैं आई थी, मैंने आपसे बातें बहुत सारी की है, और पता नहीं क्यों अब मुझे ना यार कॉफी की याद आ रही है। मन नहीं कर रहा अब कुछ भी काम करने का। तो अभी स्टूडियो से जाने के बाद ना पहले तो मैं फटाफट से कॉफी पीने वाली हूँ, और आज मैं टिफिन में कुछ नहीं लेकर आई हूँ, बिकॉज बोला ना आज मेरा कुछ करने का मन नहीं था, तो आज मेरा टिफिन लाने का भी मन नहीं था। और देखिए भाई, जब तक वीकेंड नहीं आता ना तब तक ये बोरियत तो झेलनी पड़ेगी ना। तो कोई बात नहीं, एक गाने एंजॉय करके झेल लेंगे। अभी आधा दिन तो मैंने निकाल ही दिया है, 11 बजने वाले हैं। आधा दिन कैसे, आधा दिन उन लोगों के लिए नहीं है जो उठते ही 11 बजे। तो भाई देखिए, मैं तो 7 बजे आती हूँ ना, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा आधा दिन हो गया है। कल फिर से आऊंगी, बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आऊंगी, और क्या कुछ हो रहा है आपके अपने शहर में आपको ये भी बताऊंगी। तो भाई फिलहाल मुझे दीजिए ना इजाजत, जब तक इजाजत नहीं देंगे तब तक मैं कैसे जाऊंगी, और आज नहीं जाऊंगी तो कल कैसे आऊंगी। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

Every dream is valid. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये कोड की पहली लाइन पढ़ते हुए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली लाइन ही है, एवरी ड्रीम इज वैलिड, एवरी वॉइस मैटर, एवरी स्टेप फॉरवर्ड क्रिएट अ पाथ फॉर अदर फॉलोअर्स। मतलब आप पीछे की पूरी कहानी समझ रहे, पीछे का पूरा मतलब समझ रहे हैं कि वो हर ड्रीम जो एक वुमन ने देखा है वो वैलिड है, उसे पूरा करना चाहिए। हर उठाई हुई आवाज किसी भी अन्याय के खिलाफ मैटर करती है, मायने रखती है, और वो उठाया हुआ पहला कदम जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोग उस पाथ पे चलने वाले हैं जहां चलने से पहले 10 बार वो आज से पहले सोच रहे थे। हर एक वो चीज मैटर करती है, और वो पहला कदम उठाने वाली लेडीज ही इतिहास रच देती हैं। अक्सर हमने सुना है कल्पना चावला और मैरी कॉम, बहुत सारी ऐसी लेडीज की हम मिसाल देते हैं कि उन्होंने वो पहला कदम उठाया तो शायद आज वुमेन इस फील्ड में यहां तक पहुंच पाई हैं। क्रिकेट में भी अगर किसी वुमेन ने पहला कदम वो ना उठाया होता तो शायद आज वुमेन्स क्रिकेट टीम इतना अच्छा नहीं कर रही होती। तो वो पहला कदम इस इंपॉर्टेंट, उसके बाद फॉलोअर्स तो अपने आप बन ही जाते हैं।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग डिवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।
2: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
3: कपड़े?
2: हाँ।
3: ज्वेलरी?
2: बिल्कुल।
3: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
2: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु। 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

अगर इन पे स्पॉटलाइट नहीं पड़ी तो ये स्पॉटलाइट का बनना बेकार है भैया, क्योंकि इन्होंने जो काम करा है वो शायद हम 21 साल की उम्र में तो नहीं सोच रहे। रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये 21 साल की महिला भी क्या कहूंगा, 21 साल की लड़की जिसने ये कमाल करके दिखा दिया है। इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, वहां से इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल की तरफ आया, वहां पर बड़े बड़े लीडर्स थे, इनको कहानी सुनने मिली नीम करौली बाबा के ऊपर, तो इन्होंने इंडिया आके सोचा इन पे एक मूवी बनाएंगे, और 2 करोड़ रुपए लगा के वो मूवी बनाई है जो आज 150 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है, मतलब 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर चुकी है। हनुमान अंश मूवी का नाम है और लड़की का नाम है अनुप्रिया नागर, और ये बिहाइंड द सीन से अप फ्रंट स्क्रीन इसलिए आ रही है जब ये पॉडकास्ट दे रही है, जब ये इंटरव्यूज दे रही है, तो ये उस टाइम के मिरेकल्स बता रही है, तो ये बता रही है कि जब ये फॉरेन में रहते थे और वहां बाबा को लोग कितना बिलीव कर रहे हैं और इंडियन शायद उतना नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, बट इस मूवी ने उनके माइंडसेट, उनकी बहुत सारी चीजें चेंज कर दी और मिरेकल हैपेंस। ये मूवी टोटली वो लोग कह रहे हैं मिरेकल है, क्योंकि शुरू में ये 300 स्क्रीन पे आई, 300 स्क्रीन पे ना सक्सेस होने की वजह से 23 स्क्रीन बची थी, और उस 23 स्क्रीन से लगभग 5000 स्क्रीन तक वापस आना, स्क्रीन बढ़ना, ये यूजुअली किसी मूवी के साथ नहीं होता है, बट इस मूवी के साथ हुआ है। अब ये चमत्कार समझिए या मूवी की शक्ति समझिए या फैंस का प्यार समझिए, आप जो समझना चाहते हैं समझिए, पर मूवी ने अपना सक्सेस रेट दिखा दिया है और इतना दिखा दिया है कि अब सीजन 2 इनको बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

जो नारी है ना वही असली शक्ति का रूप भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शक्ति का सही एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। मधुरा कर इंडिया की एक न्यू पावर लिफ्टिंग स्टार बनती जा रही है। 17 साल की उम्र में 4 गोल्ड मेडल जीतना IPF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इंडियन पावर लिफ्टिंग जो पूरी चैंपियनशिप है वहां पर ये जीत के आई है। जूनियर कैटेगरी में 52 kg इनका वेट है और इन्होंने जो लिफ्ट किया है वो लिफ्ट किया है 292.5 kg, मतलब अपने वेट से लगभग 3 गुना और ज्यादा इन्होंने वेट जो है वो लिफ्ट करके ये मेडल्स जो हैं वो अपने नाम करे हैं। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ऑल ओवर सब कुछ वहां पर इन्होंने करके दिखाया और जिस हिसाब से इन्होंने डोमिनेट किया उस स्टेडियम को, तो ये 100% वर्ल्ड चेंजिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए शी चेंज द वर्ल्ड में आज हमने इनको लिया है। स्मॉल बॉडी, मैसिव स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिशन सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, चैंपियन का माइंड सेट लेके इन्होंने वहां पर वो पूरी तरह से स्टेडियम में इंडिया इंडिया के जो नारे होते हैं, जो इंडिया इंडिया का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, उसको जगा दिया था। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

क्या है भैया ये 80s का ट्रेंड? ऐसा क्या आया कि ये पार्टीज जो हमारे इंडिया की हैं वो आपस में लड़ने लगे? भाई आपको हमने बनाया था लीड करने के लिए, आप ऐसा कैसा लीड कर रहे हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो कि ये देखो 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, आपस में मीम बना बना के लड़ रहे। भाई आप बनाओगे तो जो बाकी जनता है वो तो बनाएगी बनाएगी ना, उनको तो हम रोक ही नहीं सकते, उनका तो पूरा हक है जब जो उनके लीडर्स हैं वही ऐसी चीजें बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। और भाई पिछले 3 दिन से 4 दिन से मेरा पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से भरा हुआ है, सिर्फ एक चीज, 80s की फोटोज। अब मुझे लगता है 80s में इतने लोग रियलिटी में नहीं थे जितने अब पहुंच चुके हैं, उनमें मैं भी हूँ। हालांकि मैंने भी कौन सी कम बनाई है, मैंने भी बनाई दी थी 15, 20, 16 पता नहीं कितनी बनाई थी, पर 15 से तो ऊपर का ही आंकड़ा होगा जो मैंने भी क्रिएट करी है। तो अब जब सब कुछ फ्लो में चल रहा होता है तो उसी फ्लो के साथ आप भी चलना पसंद करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही चलता है जो ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंड से आप हटे तो आप सोशल मीडिया से बाहर हटे, ये भी एक रियलिटी फैक्ट वाली चीज है। इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका हिस्सा बन रही है, उन्हें भी मालूम है ट्रेंड फॉलो नहीं करा यूथ को हमने नहीं करा तो ये जेन जी हमको सपोर्ट नहीं करेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ कुष्मांडा को क्रिएशन और पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन नेगेटिविटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ है तो वो अपने आसपास और अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से करे?
1: कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसका बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके विचार ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हैं तो बाहर से उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर के स्पेस को शुद्ध कीजिए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। दिन की शुरुआत में कुछ देर मौन बैठना, उन चीजों को, उन लोगों को कृतज्ञ भाव से देखना जो आपके पास है, और अपने विचारों को नई दिशा देना। जब आपका भीतर का आकाश साफ हो जाएगा तो बाहर का अंधकार अपने आप छटने लगेगा।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने। कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं, आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा। हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉज का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ। नहीं, जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए। हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जिबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ।

लाइफ में तुमने क्या किया अगर अभी तक तुम एक ऑक्सीजन मास्टर नहीं बने। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, बट अभी भी चांस तुमने मिस नहीं किया है। रेडियो महारानी अभी भी तुम्हें चांस दे रहा है ऑक्सीजन मास्टर बनने का। अब ये कैसे बन सकते हैं, क्या होना है, मैं आपको बताता हूँ। रेडियो महारानी ने लॉन्च किया था 1 सितंबर को प्रोजेक्ट ऑक्सीजन, जहां पर हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप ऑक्सीजन मास्टर बनना चाहते हैं तो बस हमको हमारे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करिए, जो रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, कि मैं बनना चाहता हूँ ऑक्सीजन मास्टर, और हम आपको बुलाएंगे और एक प्लांट जो है वो प्यारा सा आपको गिफ्ट करेंगे, जो प्लांट आपको अपने घर ले जाके उसे लगाना है और उसके बाद उसकी सेल्फी खींच के हमको शेयर करनी है। और इसी तरह आपके कोई नोन हो उन्हें भी ऑक्सीजन मास्टर बनने का सजेशन दीजिए, और ऐसे ही प्लांट लगा लगा के हम बनेंगे ऑक्सीजन मास्टर। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: फरीदाबाद वालों, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? अरे बहुत कम दिन बचे हैं और उस दिन वो जो बड़ा सा अमाउंट है वो आप ही को जीतना है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ और मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद हाफ मैराथन की, जहाँ पर रन जो है वो होने वाली है 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की फन रन भी होने वाली है। और ये कहाँ होने वाली है? सूरज कुंड मेला ग्राउंड पे। और 27 तारीख जो है वो आपने अपने कैलेंडर पे ऐसे सर्कल बना के रख लेनी है और सुबह सुबह पहुंच जाना है इस रन के लिए। बट उससे पहले एक काम आपको और करना है, अपना रजिस्ट्रेशन रन के लिए कराना। और रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको जाना है www.faridabadhalfmarathon.in, इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। और ये जो रन है इसके पीछे का जो कॉज है, जो मोटिव है, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी हरियाणा और प्लस नशा मुक्त हरियाणा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवी ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन

इजिप्ट मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था। तो लोग तब लगाते थे, फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने। कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं, आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा। हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

इस सोसाइटी में ना नारी बहुत सारे रोल जो है वो प्ले कर दिए, कभी एक वर्किंग वुमेन का, कभी एक टीचर का, कभी किसी के रोल मॉडल बनने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और एक ऐसी ही नारी आज मेरे साथ है जो हमारे लिए रोल मॉडल भी है, जो ऑथर भी है, जो टीचर भी है, और वर्किंग वुमेन तो ऑब्वियस सी बातें है ही, प्लस अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। प्राची भारद्वाज आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। प्राची,

0: पहले तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, एज अ टीचर जर्नी आप कैसे आए, या कोई और फ्यूचर में कोई लड़की अगर इस टीचिंग जर्नी में आना चाह रही है तो उससे अगर आप गाइड करना चाहें।
1: ओके, सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार टू ऑल माय ऑडियंस एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू टू रेडियो महारानी मुझे आज बुलाने के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक वर्किंग वुमन है एंड मैं सारी गर्ल्स को जो भी आज मुझे रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म के थ्रू सुन रही हैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई फील कि एक ब्लेसिंग है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और उसके साथ एक टीचर हूँ। तो चैलेंजेस तो सर हर जगह है, नो डाउट, लाइफ विदाउट चैलेंजेस आई थिंक किसी के भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक एग्जांपल को लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके लाइफ में चैलेंजेस हो। तो बीइंग अ टीचर कुछ चैलेंजेस जो होते हैं, सबसे पहला कि बहुत टायरसम जॉब है, आपको हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ रहना है, ठीक है। आप टायर्ड हो, आप परेशान हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप जब क्लास में एंटर करेंगे, आप जब क्लास में पढ़ाएंगे, तो यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड आपके फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके। और चैलेंजेस तो मैं यही कहूँगी कि यही है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि हमें बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। वो अगेन कहीं आपको उनकी मदर बनना पड़ रहा है, कहीं आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है, कभी आपको उनका एक आई वुड से काउंसलर बनना पड़ रहा है। तो ये आप एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अलग रोल्स भी प्ले करेंगे, तो ये भी एक चैलेंज है कभी कभी कि आप एक सिर्फ टीचर नहीं है, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रादर आप उनकी मामा भी बन रहे हैं, कभी आप उनके लिए फ्रेंड भी बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो आई वुड से चैलेंज, बट कहीं ना कहीं आई फील इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आपको फिट होना आता है। सो दिस इज आई वुड से फ्यू चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि एक टीचर को होंगे।
0: अब एक टीचर यहाँ पर है और उससे हम ये डिजिटल चेंज के बारे में नहीं जानेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद हम लौट के वापस आते हैं और प्राची से ये डिजिटल दुनिया के चेंजेस के बारे में या डिजिटल दुनिया में चेंजेस आने की वजह से जो हमारे हर्डल्स आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
2: मन गणत सूत्र लाके से, मन गणत सूत्र, मन गणत सूत्र लाके से, मन गणत सूत्र।

0: 31 अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन, प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18 अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग नाइट ऑफ डीजे, ढोल, गरबा, डांडिया एंड नॉन स्टॉप फेस्टिव एनर्जी। ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिक्स एंटरटेनमेंट एट रोजवुड ग्रैंड होटल सेक्टर 34 फरीदाबाद। टिकट पार्टनर ऑल इवेंट्स, सपोर्टिंग पार्टनर आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद एंड स्टूडियो 1 डांस एंड फिटनेस, रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी, सलून पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलून नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप, ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा, गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग, ऑर्थोफिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर, क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइन। So, wear your best garba look, bring your people and get ready to dance the night away. 18th October, Glorix Garba Night 2026. Be there, be festive, be Glorix.
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन। 15th अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: तो हमारी जो आज की गेस्ट हैं ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये एक ऑथर भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और प्राची, आप टीचर के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया?
1: ओके सर, सो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई, एंड दैट इज अनबॉदर्ड। तो ये एक शिफ्ट था जो कि मेरे को लगा कि अब मैंने टेंसेस बहुत पढ़ा लिए हैं, जिससे बच्चों की मैंने टेंसेस बहुत सिखा दिए, बट अब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ रिफ्रेम कर सके। सो मैंने बुक लिखी अनबॉदर्ड, और जैसे कि टाइटल ही खुद कह रहा है कि यू हैव टू लीव ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो ये नो डाउट बच्चों के लिए, बट आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन देयर टीन्स एंड फॉर पीपल लाइक अस दोज हु आर इन देयर थर्टीज। ये बुक ये थी जब मैंने देखा कि आजकल बच्चा बहुत परेशान है उन कमेंट्स से जो कि उनके फ्रेंड्स उनको पास ऑन कर रहे हैं, हम एज अ वर्कर्स परेशान हैं उन कमेंट्स से जो कि एक्चुअल में कोई यूज़ के नहीं है। तो अनबॉदर्ड इज़ अ बुक जो कि आपको ये बताता है कि लाइफ में बहुत लोग कमेंट करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, बट आपको कैसे अनबॉदर्ड रहना है, आपको अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है, दिस इज समथिंग जो मैंने इस बुक में लिखा। तो ये एक नो डाउट शिफ्ट था रेड पेन से एक राइटिंग पेन के टुवर्ड्स जो मैंने किया, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। एंड ये सब टॉपिक्स मुझे बच्चों से ही आए कि जो मैं उनको देख रही हूँ आजकल वो पीयर प्रेशर में है, आजकल वो डिप्रेशन में है, वो आजकल अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, अगर मैं बात करूँ हमारी एज अ यंग जनरेशन, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, हम लोग कंपैरिजन में है, हम लोग उन सारे चीज़ों से बाउंडेड है जो कि एक्चुअल में किसी भी वर्थ की नहीं है, बट वो हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मैटर कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अनबॉदर्ड, एंड अब वो सारे ही आपके अमेजोन एंड आपके सारे यू कैन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो यस, दिस वॉज अ शिफ्ट, एंड नो डाउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम्स का उसी ने मुझे मोटिवेट किया, क्लासरूम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड रादर से, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए। एंड या द बुक इज डूइंग गुड,
0: ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ये बुक के लिए जो अभी आई है। आई होप बहुत सारे लोग उसे रीड करें, बहुत सारे लोग इस पे रिव्यू दें, बहुत सारे लोग इस पे फीडबैक दें, और आप आगे ऐसे भी और बुक्स जो हैं वो लिखती रहें। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें एक टीचर की लाइफ से रिलेटेड, एक स्कूल की लाइफ से रिलेटेड फिर से वो सारा रिकैप देने के लिए। एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं

ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूँगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है, या किसी का खून बहुत ज़्यादा है, या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना, या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना, या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

0: देखो हम बच्चे हैं और हमारे पास सबसे बड़ा टूल होता है एक्सक्यूज देना जब भी हमसे कोई काम टीचर सामने से बोल दे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यही आने वाला है, कोई ऐसा क्लास का इंसिडेंट जहां पर आपने होमवर्क दिया और बच्चे ने नहीं किया और एक्सक्यूज सुन के आपको लगा यार ये क्या फनी बात कर रहा है, ये क्या बिल्कुल ऐसी इलॉजिकल बात कर रहा है।
1: होमवर्क तो सर नो डाउट बहुत बच्चे नहीं करके आते हैं, एंड एक्सक्यूजेस आई वुड से कॉमन एक्सक्यूजेस यही रहते हैं, कॉपी भूल गया, कर रहा था, टेबल पे कॉपी रह गई। और एक एक्सक्यूज जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है वो ये था कि मैम मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है, मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई। तो आई वॉज लाइक ओके, बट वो एक नोटोरियस बच्चा था लाइक, तो मुझे था कि एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि लेट मी कॉल द पेरेंट एंड आस्क कि ऐसे घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है। एंड जो उन्होंने कहा था कि ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, लकीली वो या आई वुड से इट वॉज अ नॉट गुड थिंग फॉर हिम, वो ग्रैंड फादर ने ही फोन उठा लिया। एंड आई वॉज लाइक कि सर कुछ मिस हैपनिंग हुई है घर पे, तो उन्होंने कहा कि किसकी मैम, मैंने कहा कह रहा है कि बाबा की डेथ हो गई है, कह रहे मैं तो बाबा ही बोल रहा हूँ। तो बच्चा देखिए बच्चा है फिर से ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बच्चे बहुत आई वुड से कभी कभी फनी एक्सक्यूजेस देते हैं। और एक टीचर को पता होता है सर कि कब एक्सक्यूज है कब जेन्युइन रीजन है।
0: अच्छा अगला एक सवाल मैं इसी में पूछना चाहूंगा, आपको अगर हम एक दिन के लिए वापस स्टूडेंट बना दे तो आप अपनी कौन सी टीचर के पास वापस जाना चाहोगे या कौन सा सब्जेक्ट वो है जिसे अटेंड करना चाहोगे?
1: मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे, बट हाँ अगर किसी टीचर की क्लास मैं दोबारा से लाइक अटेंड करना चाहूँ तो वो अगेन मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँगी, तो वो मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी। एंड टीचर लाइक टीचर का मैं नाम लूँ तो मेरे सारे इंग्लिश टीचर्स, जैसे चलो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने इंग्लिश टीचर्स को भी एक आई वुड से सैल्यूट या फिर उनको भी एक रिकॉग्नेंस देना चाहूँगी, जैसे जगदीश सर थे हमारे इंग्लिश के, हमारे अशोक सर थे, निशा मैम थी, तो सारे टीचर्स थे, सबकी मैं क्लासेस दोबारा अटेंड करना चाहूँगी। एंड वो सारे जैसे वो पढ़ाते थे, कहीं ना कहीं आज मैं उस चीज़ को कॉपी कर रही हूँ क्योंकि सीखा वहीं से ही है, जो जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है उसी में ही कुछ आई वुड से एडवांसमेंट करके आज मैं पढ़ा रही हूँ। तो आई थिंक इंग्लिश क्लासेस एंड अपने सारे इंग्लिश टीचर्स, नो नॉट अ स्पेसिफिक वन, बट हाँ तो याद भी नहीं है आई वुड से सबका नाम, बट हाँ जी

0: इंग्लिश टीचर्स मेरे जो थे उनकी क्लासेस में दोबारा अटेंड करना जरूर चाहूंगी कभी लाइफ में मौका मिला तो।
1: तो ये है प्राची भारद्वाज जो खुद एक टीचर हैं और इन्हीं से हम टीचिंग की जर्नी, स्टूडेंट्स की जर्नी और ओवरऑल एक एज अ टीचर क्या फील होता है उसका समझ जानने की कोशिश कर रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ कुष्मांडा को क्रिएशन और पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन नेगेटिविटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ है तो वो अपने आसपास और अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से करे?
1: कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसका बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके विचार ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हैं तो बाहर से उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर के स्पेस को शुद्ध कीजिए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। दिन की शुरुआत में कुछ देर मौन बैठना, उन चीजों को, उन लोगों को कृतज्ञ भाव से देखना जो आपके पास है, और अपने विचारों को नई दिशा देना। जब आपका भीतर का आकाश साफ हो जाएगा तो बाहर का अंधकार अपने आप छटने लगेगा।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

0: फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल है आप सभी के। अच्छा एक बात बताइए, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरे दिन चलती ही रहती हैं, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा वक्त तो बनता है ना भाई। तो बस आपके इसी ब्रेक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने आ गई हूँ मैं पलक, लेकर आपका अपना शो फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर, जहाँ होंगी बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग बातें, फिल्मी अपडेट्स और आपके फेवरेट गाने। तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब लगने वाला है एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।
2: रो लग जाएंगे, मत करो।

0: कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को याद करते हैं और आज का चौथा दिन समर्पित है माँ कुष्मंडा को, जिन्हें खुशी, ऊर्जा और जीवन में रोशनी का प्रतीक माना जाता है। और आज इसी मौके पर बात करते हैं 2016 में आई एक ऐसी फिल्म की जो हमें एक बेटी की हिम्मत और हौसले की कहानी सुनाती है, जिसका नाम है नीरजा। सोनम कपूर की इस फिल्म की कहानी नीरजा भनोट की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में पैन एम फ्लाइट में हाईजैक के दौरान पैसेंजर्स की जान बचाते हुए शहीद हो गई थी। जब प्लेन हाईजैक हुआ तब नीरजा चाहती तो खुद को बचाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पैसेंजर्स को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई और कई लोगों की जान बचाई। उनकी इसी बहादुरी के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। और इस फिल्म में सोनम कपूर के साथ शबाना आजमी ने भी एक इमोशनल परफॉर्मेंस दी है, खासकर नीरजा की माँ के रोल में। और डायरेक्टर राम माधवनी ने इस रियल स्टोरी को इतने पावरफुल तरीके से दिखाया कि फिल्म देखते हुए हम नीरजा के हौसले को महसूस कर पाते हैं। और नवरात्रि के इस दिन जब हम माँ कुष्मंडा की ऊर्जा और शक्ति को याद कर रहे हैं, तो नीरजा की कहानी भी हमें याद दिलाती है कि असली हिम्मत मुश्किल वक्त में ही सामने आती है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना जो रिलीज के टाइम भले ही ज्यादा कमाल ना दिखा पाए, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस के दिल में अपनी परमानेंट जगह बना लेती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म है खोसला का घोसला। जी हाँ, 2006 में आई इस कॉमेडी फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी और रणवीर शौर्य की जबरदस्त एक्टिंग ने लोगों को खूब एंटरटेन किया था। और अब लगभग 20 साल बाद खोसला फैमिली एक बार फिर वापस आ रही है अपनी अगली कहानी के साथ। जी हाँ, खोसला का घोसला पार्ट 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस बार पुराने फेवरेट एक्टर्स के साथ रवि किशन और दिव्या खोसला जैसे नए चेहरे भी नजर आएंगे। और पहली फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदलकर 5 मार्च 2027 कर दी गई है। अब देखना यह है कि खोसला फैमिली की ये नई कहानी पहली फिल्म जैसा ही कॉमेडी वाला मैजिक दोबारा ला पाती है या नहीं। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात

तुम कहाँ थे? तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है, बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: ओ हेलो
2: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ क्योंकि इस अक्टूबर डांडिया की रात होगी और भी धमाकेदार। बॉलीवुड का तड़का, ढोल की थाप और मस्ती बेशुमार। ढोल डांडिया 2026, जहां मिलेगा ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट का एक्सप्लोजन और आपके फेवरेट स्टार से मिलने का गोल्डन चांस। जी हां, मिलने आ रहे हैं तुम मेरे हो की स्टार कास्ट गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया। साथ ही मिलने का मौका सोहित विजय सोनी से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं बल्कि तेनाली रामा भाभी जी घर पर हैं, जैसे शो से अपनी पहचान बना चुके हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज अभी खत्म नहीं हुआ। खुशी बालियान के स्पेशल अपीयरेंस के साथ एंजॉय करिए एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, डिलीशियस फूड और शॉपिंग स्टॉल्स। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ले आइए और डांडिया की बीच पर मचाइए फुल ऑन धमाल। 17 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से रॉयल कासा लाउंज फरीदाबाद, प्रेजेंटेड बाय सार्क इवेंट्स और व्यापार कारोबार टॉप। वेन्यू पार्टनर रॉयल कासा लॉन, पावर्ड बाय सीडास ग्रुप और रेडियो महारानी। गोल्ड स्पॉन्सर द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल, मीडिया पार्टनर पहचान फरीदाबाद। और याद रखिएगा, ढोल डांडिया 2026, जहां ढोल बजेगा और फरीदाबाद झूमेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बॉलीवुड से थोड़ा साउथ साइड चलते हैं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। बात हो रही है जूनियर एनटीआर और केजीएफ फेम प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म ड्रैगन की। कुछ टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि जूनियर एनटीआर की इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट डिले हो सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के हाथ में इंजरी के बाद सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ हफ्तों के रेस्ट की एडवाइस दी गई थी। लेकिन अब मेकर्स ने रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। प्रोड्यूसर रवि शंकर यलमंचली ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन अपनी अनाउंस्ड रिलीज डेट पर ही थिएटर्स में आएगी, जो कि है 11 जून 2027। और इंटरेस्टिंगली एनटीआर के रिकवर होने के दौरान प्रशांत नील फिल्म के वो पोर्शंस शूट कर रहे हैं जहां जूनियर एनटीआर की नीड नहीं है, मतलब हीरो रेस्ट पर है लेकिन डायरेक्टर का कैमरा रुकने वाला नहीं है भाई। फिल्म में एनटीआर की अपोजिट रुक्मणी वसंत नजर आएंगी और अनिल कपूर भी नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ के इम्पोर्टेंट रोल में है। तो फिलहाल ड्रैगन की रिलीज डेट लॉक्ड है और प्रशांत नील के डायरेक्शन में जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और एक मैसिव एक्शन वर्ल्ड, ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए 11 जून 2027 कैलेंडर में मार्क करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ गाने ना सिर्फ सुने नहीं जाते, उनके सीन्स भी दिमाग में ऐसे चिपक जाते हैं कि सालों बाद भी देखकर हंसी आ जाती है। और ऐसा ही एक

जी हाँ, दीदी तेरा देवर दीवाना फिल्म हम आपके हैं कौन से, अब इस गाने से जुड़ा एक मजेदार किस्सा खुद माधुरी दीक्षित ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि गाने में एक सीन था जहां सलमान का करेक्टर प्रेम माधुरी यानी निशा पर गुलेल से फूल मारता है। पर्दे पर तो ये सीन बड़ा ही क्यूट और फनी लगता है, लेकिन इसकी शूटिंग में टीम के पसीने छूट गए भाई। कभी निशाना चूक जाता, कभी फूल टूट जाता, तो कभी गुलेल से फूल ठीक से निकलता ही नहीं था। और आखिरकार इस एक सीन के लिए लगभग 10 से 15 रीटेक्स लेने पड़े। और मजेदार बात यह है कि इस गाने में जो स्टेप था ना, जहां पीछे से आकर फूल लगता है, उसे लेकर भी टीम को पहले डाउट कि ये स्क्रीन पर अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन माधुरी जी और कोरियोग्राफर्स को पूरा भरोसा था कि ये सीन ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और देखिए, आज इतने सालों बाद भी ये गाना और इसका अंदाज लोगों को याद है। लता मंगेशकर जी की आवाज और सलमान और माधुरी की केमिस्ट्री ने इसे एवरग्रीन बना दिया। और अब गानों की बात मैंने छेड़ ही दी है और वक्त भी गाने का हो गया, तो भाई एंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818682

0: 9449 और 9650500285. Enterprising Divas presents Dahlia Night Magic and Radio Maharani 89.6 FM is your radio partner. एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब एक ऐसी फिल्म की बात जिसके लिए फैंस काफी टाइम से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अंधाधुन पार्ट 2 कब आ रही है भाई। 2018 में आई आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे स्टारर अंधाधुन ने अपने ट्विस्ट और डार्क ह्यूमर से ऑडियंस को काफी कंफ्यूज भी किया और एंटरटेन भी। अब FICCI फ्रेम्स 2026 में आयुष्मान ने खुद डायरेक्टर श्री राम राघवन से सीधा पूछ लिया कि भाई अंधाधुन पार्ट 2 आप ला कब रहे हो। और श्री राम राघवन का जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि सीक्वल तभी बनाएंगे जब उन्हें ऐसी अच्छी और ओरिजिनल स्टोरी मिल जाए जो पहली फिल्म की स्टोरी को खराब ना करे। मतलब सीक्वल का आइडिया रिजेक्ट नहीं हुआ है, बस मेकर्स शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। और ऑनेस्टली अंधाधुन जैसी फिल्म का सीक्वल हो और उसमें ट्विस्ट कम पड़ जाए, ये तो फैंस भी नहीं चाहेंगे ना। तो फिलहाल अंधाधुन पार्ट 2 का वेट जारी है क्योंकि श्री राम राघवन को चाहिए एक ऐसी कहानी जो पहली फिल्म के लेवल का सस्पेंस दोबारा क्रिएट कर सके। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: इस अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18th अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग नाइट ऑफ डीजे, ढोल, गरबा, डांडिया एंड नॉन स्टॉप फेस्टिव एनर्जी। ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिक्स एंटरटेनमेंट एट रोजवुड ग्रैंड होटल सेक्टर 34 फरीदाबाद। टिकट पार्टनर ऑल इवेंट्स, सपोर्टिंग पार्टनर आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद एंड स्टूडियो वन डांस एंड फिटनेस, रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी, सलो पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलो नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप, ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा, गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग, ऑर्थोफिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर, क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइन। सो वेयर योर बेस्ट गरबा लुक, ब्रिंग योर पीपल एंड गेट रेडी टू डांस द नाइट अवे। 18th अक्टूबर ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। बी देयर, बी फेस्टिव, बी ग्लोरिक्स।

हॉरर फिल्म देखते वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इस फिल्म में जो भी भूत है उससे हम एक्चुअल में डरेंगे या नहीं, है ना। लेकिन अजय देवगन की नेक्स्ट सुपर नेचुरल फिल्म में कहानी सिर्फ डराने तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, क्योंकि अजय देवगन एक बार फिर सुपर नेचुरल हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल रिपोर्टेडली लॉक हो चुका है, जिसका नाम है सूर्य स्पर्श। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित जुगराज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी पूरी जो है ना वो गरुड़ पुराण से इंस्पायर्ड होगी। और आप तो जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में लाइफ, डेथ, कर्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सब्जेक्ट्स का जिक्र मिलता है। इस टाइटल से पहले इसका एक और टाइटल रखा गया था जिसका नाम था गृह प्रवेश, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने सूर्य स्पर्श टाइटल फाइनल किया है और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है। और अजय देवगन का सुपर नेचुरल जोन कोई नया नहीं है, क्योंकि शैतान और काल के बाद अब देखना ये होगा कि इस मूवी में जर का लेवल कितना ऊपर जाता है। फिलहाल फिल्म की रिलीज में टाइम है, तो भाई अजय देवगन आ रहे हैं गरुड़ पुराण की कहानी लेकर। अब भूत से डरना है या उसकी पूरी स्टोरी से ही डरना है ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली 89.6 रेडियो महारानी पर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ताती आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: मन गणत सूत्र लाके से मन गणत सूत्र।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: तो दोस्तों, बॉलीवुड की इतनी सारी बातें और इंटरेस्टिंग किस्से सुनते सुनते वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला भाई। उम्मीद है आपको आज का फिल्मी फ्लेवर पसंद आया होगा। तो बस अपनी लाइफ की पिक्चर को फुल एंटरटेनमेंट बनाए रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ मैं पलक अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। कल फिर मिलूंगी इसी जगह इसी समय नई बातों और नए गानों के साथ। तब तक सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। बाय बाय, टेक केयर।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ कुष्मांडा को क्रिएशन और पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन नेगेटिविटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ है तो वो अपने आसपास और अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से करे?
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं, आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

गाइज, आप लोगों को बिलीव होता है कि आप वही इंसान है जो आज से 10-15 साल पहले स्कूल जाने के लिए बिल्कुल टाइम पे 6 बजे उठ जाते थे, 7 बजे स्कूल पहुंचते थे। आरजे गौरव है आप सभी के साथ, और मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वही इंसान हूँ जो सुबह सुबह उठकर स्कूल पहुंच जाता था। खैर, अपनी मर्जी से तो उठता नहीं था, घर वाले ही उठाते थे, बोलते जल्दी उठ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी। बस तो एक साल ही लगी वैसे, बट स्टिल बोलते थे स्कूल लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपनी सारी कॉपीज रख लो, ये रख लो, वो रख लो। और पता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ क्या होती थी? जब हम स्कूल पहुंच जाते थे ना, तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ना हमारा वो चेक करते थे, आईडी कार्ड। मतलब कोई कितना पागल हो सकता है कि सुबह सुबह किसी और के स्कूल में पहुंच जाएगा, वो भी तैयार होके। मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आज चौथा नवरात्र है, नवरात्र की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ मैंने आज एक चीज नोटिस करी फरीदाबाद में, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। ये अक्सर हम लोग बोलते हैं रेडियो से, आप लोग और भी जगह पे सुनते होंगे कि एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, पहले रास्ता दीजिए।

करूंगा मैं, बट फरीदाबाद में ना कुछ ऐसे कमाल के लोग हैं मैं किसी की गाड़ी का नंबर मैंने नोट नहीं किया, बट स्टिल मेरी साइड से एक एम्बुलेंस निकलती है और उन्होंने सायरन बजा रखा था। देखिए वो सायरन नहीं भी बजा रही है, अगर लाइट ऑन है ना तो इट मींस वो कहीं जा रही है, तो एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। अब उन्होंने सायरन भी बजा रखा था और अंदर दिख रहा था कि कोई पेशेंट है, और यहाँ पर लोग आगे से साइड देने की बजाय पता क्या कर रहे थे, स्पीड और तेज़ कर रहे थे। अरे मेरे भाई आप साइड हो जाओ, आगे वाला इंसान अपने आप साइड हो जाएगा, आप अपनी अपनी सोचो सिर्फ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास भी कभी, भगवान ना करे किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, बट अगर आपके आसपास भी कभी एम्बुलेंस गुजरे तो प्लीज़ उनको रास्ता दीजिए। मतलब कोशिश कीजिए आप रोड से गाड़ी नीचे उतार दीजिए, मतलब वो जो नीचे मींस ऐसा नहीं है कि फ्लाईओवर से नीचे उतार दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रोड के साइड में जो सर्विस लेन पे बिल्कुल नीचे की तरफ साइड फुटपाथ होता है उधर तक उतार सकते हो आप गाड़ी को, नो इश्यूज़, बट एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। क्या पता क्या हो रहा है एम्बुलेंस के अंदर, क्या पता है क्या कौन जा रहा है, कौन सा पेशेंट जा रहा है। तो बस यही कहना चाहता था, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर अगले चार घंटों के लिए हम लोग खूब सारी बातें करने वाले हैं, मस्ती भी होगी, और इसी बीच अगर आप लोगों को फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी बातें शेयर करनी है मेरे साथ तो वो भी कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9654896896, कॉल या मैसेज कीजिए। फिलहाल रेडियो महारानी पर सुनिए इस गाने को, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास

0: ध्यान रखें, किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
1: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

दुनिया के टॉप बेस्ट देशों की लिस्ट आ गई मेरे सामने और आपको लग रहा होगा इंडिया कौन से नंबर पर है। जिनको भी इंडिया के लिए दुख हो रहा है ना, पछताओगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए दुख हो रहा होगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन लोगों का काम है हर चीज़ में कमियाँ निकालना, हर चीज़ में कमियाँ निकाल देंगे। दिमागी है ना, फिर क्या कर सकते, दिमाग ऐसा है, क्या कह सकते हैं उन्हें। मतलब मैं उन्हें बोलूँगा ना कि भाई तेरे को पता है टॉप टेन में इंडिया की, टॉप फर्स्ट तो नहीं आई ना, ऐसे बोलेंगे। मैं बोलूँगा भाई इंडिया ने ये कर दिखाया तो अमेरिका ने तो ये कब का कर लिया था। अरे खुश हो जाओ भाई, कभी तो खुश हो जाया करो। तो चलिए खैर उन लोगों को साइड कर देते हैं। अभी रेडियो महारानी पर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे अच्छे देशों की लिस्ट आई है। ऑल्दो टॉप टेन में इंडिया नहीं है, आई नो, इससे दुख होता है काफ़ी बार, बट ठीक है अभी आ जाएगी धीरे धीरे, इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ग्रीस को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड साल 2026 की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया ग्रीस ने। और ग्रीस के बाद जापान। जापान की बहुत सारी वीडियोस आती है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि हम लोगों ने जूते उतार दिए, हम लोग जुराब पहन के घूम रहे थे और हमारे जुराब पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी। सारी की सारी भ्रामक वीडियोस। आई डोंट नो क्या मिल जाता है ऐसी वीडियोस बना के, क्योंकि उन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि हम लोग रोक के वीडियो देखेंगे। वीडियो रोक के अगर आप देखोगे ना आपको पता लगेगा सॉक्स चेंज हो जाते हैं रास्ते में। खैर वापस आते हैं, सेकंड नंबर पर जापान है, थर्ड नंबर पर इटली, फोर्थ नंबर पर टर्की। यहाँ पर कन्फ्यूजन है मुझे क्योंकि टर्की में अभी रिसेंटली भूकंप आया था, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बट ठीक है ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नापी जाती है। तो इटली के बाद टर्की, टर्की के बाद पोर्चुगल, पोर्चुगल के बाद कोस्टा रिका, फिर क्रोएशिया, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद कीनिया आ रहा है यहाँ पे। ये सबसे अच्छे देशों की लिस्ट जारी हो रही है। फिर उसके बाद आता है थाईलैंड। अब ये सारे के सारे स्कोर्स मिले हैं सबको, किसी को 100 मिले, किसी को 99 मिले, किसी को 98 मिले, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, खर्चे होते हैं, सब कुछ इंक्लूड करके देखते हैं। और इंडिया इसमें 17th नंबर पर आ रहा है। तो ठीक है टॉप 20 देशों में इंडिया तो शामिल होगी, टॉप 20 अच्छे देशों में कहूँगा मैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही अच्छा रहा है। और ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, बस यही बोलेंगे। और इसी के साथ साथ गाने चलाएंगे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

Cinemas, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: आपको पता है एक नए टाइप का स्कैम आ गया मार्केट में, और ये स्कैम बहुत ज्यादा नुकसानदायक है सभी लोगों के लिए, और इस स्कैम का नाम है व्हाट्सएप नो स्कैम, मींस नो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको अगर आपने गलती से भी नो लिखकर भेज दिया तो क्या होगा आपके साथ, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, आपके पास हो सकता है मैसेज आएगा किसी बैंक की तरफ से, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और हो सकता है आपने ट्रांजैक्शन ना भी किया हो तो आपके पास ना एक मैसेज आ जाएगा। और मोस्टली जब ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा तो मैसेज आएगा आपकी प्रेफर्ड बैंक से, जिस भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और उस पर लिखा होगा कि आपने क्या ये अमाउंट डेबिट किया है, येस और नो। अब आपको लगेगा ऐसा तो मैंने कोई अमाउंट करा ही नहीं है, मैंने किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं करे वैसे, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो वो जो नो वाला लिंक होगा ना, वो आपको कहीं और ले जाएगा, फिर वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स डालिए। और ऐसे ही हड़बड़ी में इंसान अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल देता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पर आए हुए ऐसे मैसेजेस से बच के रहें। और अगर आपको कोई बोलता है इस लिंक पर क्लिक करें, अगर आपने पैसे ये ट्रांजेक्शन नहीं करी है, या फिर बोलेंगे कि इस फाइल को ओपन कीजिए, बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसे टाइम पर आपको मतलब सबसे पहले आपको उस नंबर को ब्लॉक करना है और रिपोर्ट भी करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है जो आपको पता ही नहीं है, और आपके पास व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज आता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है। मतलब जिस भी बैंक पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस भी बैंक से आप लेन देन करते हैं, आप उनको कॉल कीजिए। आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उसका नंबर आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप पता करिए कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, उनको कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई भी है या फिर नहीं। और अगर पैसा सच में कट गया है तो फिर उसके बाद आपको कॉल करना है 1930 पर, और जितने भी अनवेरीफाइड नंबर है ना, उन सबके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। गौरव है मेरा नाम, बातें और गाने यूं ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।
1: Hola, como estás? इसका मतलब how are you? शायद हाँ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

मार्केट में रावण बिक रहे हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कोई बड़े हैं, कोई छोटे से हैं, और कुछ लोग तो अपने खुद के रावण बनाने में बहुत ज्यादा बिजी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो का गौरव भी कहते हैं आप लोग, और इसी के साथ साथ मार्केट में रावण बिक रहे हैं फरीदाबाद में, बीके चौक पे, और इसी के साथ साथ अपना नीलम गोलचक्र के आसपास और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर रावण बिक रहे होंगे। तो इन कलाकारों की तो चलो बात अलग है, बट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद से रावण बना रहे हैं इस टाइम। और क्या आप लोगों ने कभी बनाया रावण? जैसे बचपन में मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे हुआ करते थे, हमारी गली के कुछ भैया लोग थे, वो लोग मिलकर सब लोग रावण बनाते थे, फिर उसके बाद चंदा इकट्ठा करने जाते थे लोगों के घरों में। लाइक किसी के घर में जा रहे हैं, किसी से 10 रुपये मिल गए, 20 रुपये मिल गए, और फिर उसके बाद सब मिलके पटाखे लेकर आते थे, और फिर भूसा लेकर आते थे, अंदर पहले भूसा भरते थे, फिर पटाखे भरते थे, फिर उसके बाद शाम को सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर उस रावण को जलाते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती है जब रावणों को देखते हैं। अब तो चलो खैर मार्केट में मिलने लग गए हैं, बट पहले नहीं मिला करते थे। और राइट नाउ भी मैंने काफ़ी सारी जगह पर देखा है, जैसे NIT1 NIT5 की मार्केट्स में देखा है मैंने, काफ़ी सारे लोग अभी भी गली वाले मिलकर शाम को इकट्ठा होकर वो लोग रात भर मिलकर रावण बनाते हैं, और कुछ कुछ लोग तो 2 से 3 दिन में बना के ख़त्म कर देते हैं, बट कुछ लोग पूरे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक मेहनत करते हैं और फिर उसको बनाते रहते हैं। अब ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये त्योहारों का एसेंस ना ख़त्म होता जा रहा है, और ये चीज़ हम सभी जानते हैं। जहाँ पहले बचपन में इतना ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड रहते थे हर चीज़ के लिए, होली आ रही है होली, एक हफ्ते पहले से ही हम लोग रेडी हो जाते थे, दिवाली आ रही दिवाली, एक महीने पहले से ही रेडी हो जाते थे, छोटे छोटे बिजली बम के पैकेट लेकर आते थे और लाइक फोड़ना स्टार्ट कर देते थे गली वाले सारे दोस्त मिलकर। फिर उसके बाद दिवाली होली ये तो हो गई, न्यू ईयर पर भी हम लोग ऐसा ही करते थे कि सारे दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते थे। तो क्या आप लोग भी ये पुराने वाली मेमोरीज याद करते हैं, मतलब पुराने वाले दिन मिस करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो उन्हीं दिनों को रिलिव ज़रूर कीजिएगा, मेरा बस यही कहना है कि इन दिनों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। और एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं हूँ गौरव, आपके साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मना

9.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना सुनना,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे
5: This is the social song.
6: सुबह उठे, फोन उठाया,

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

दुनिया में जो भी चीज होती है ना, फीमेल्स की सेफ्टी सबसे पहले रखी जाती है, फिर आती है थोड़ी बहुत मेल्स की सेफ्टी भी। और देखो मजाक अलग चीज है, बट मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो सीरियस है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और मैं फीमेल सेफ्टी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, वुमेन सेफ्टी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ मेल्स अपने आप को निकाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट हम लोगों को वुमेन्स की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ही दिल्ली में काफ़ी सारे क्लब्स में हुआ है और बार्स में हुआ है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो आजकल लोग डेटिंग साइट्स के थ्रू मिलते हैं, हम सब जानते हैं ये चीज़, डेटिंग साइट्स के थ्रू लोग मिलते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है जो सामने वाला इंसान है वो डेटिंग साइट पर तो अच्छा दिख रहा है, बट रियलिटी में वो इतना अच्छा है नहीं, तब आती है दिक्कत। अब अगर रियलिटी में वो अच्छा नहीं है तो दिल्ली में काफ़ी सारे बार्स ने, कैफेज़ ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि आप ड्रिंक के कोड्स हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हैं या फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि जो मेरी डेट है जिसके साथ मैं आई हूँ मिलने, वो अगर सेफ नहीं है या फिर वो इंसान अच्छा नहीं है, तो आप लोग वेटर को बुलाकर बोल सकते हैं कि मुझे एक ड्रिंक चाहिए, वो भी नीट या फिर विद आइस। बस आपको कोई भी ड्रिंक का नाम लेना है और बोलना है नीट ला दो या फिर आइस के साथ ला दो। तो यहाँ पर बारटेंडर को एक सिग्नल मिल जाता है, जिसके बाद बार का मैनेजर या फिर कैफ़े का मैनेजर आकर उस वुमेन को वहाँ से बुला लेते हैं किसी काम के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के लिए, और फिर उनको वहाँ से सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो इसमें ना क्या करना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए, स्पष्ट रूप से आंसर देना चाहिए। और यहीं पर अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी किसी ऑनलाइन डेट से मिल रहे हैं, यानी कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू, डेटिंग वेबसाइट के थ्रू अगर आप किसी से मिल रहे हैं, तो किसी कैफ़े जाना अवॉइड कीजिए। आप लोग किसी पब्लिक स्पेस में जाइए जहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअली डिसीजन बना हो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूँ आप लोगों के लिए गाने, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

आप लोग सपने में कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं? मतलब ऐसा लगाओ आप लोगों को कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ घूम रहे हो, हो सकता है पंकज त्रिपाठी के साथ घूम रहे हो आप मिर्जापुर से। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। एक्चुअली में क्या होता है, देखो सपने आते हैं ना तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है। हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल मतलब हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल मतलब भी हो, क्योंकि स्वप्न शास्त्र भी होती है कुछ चीज़। खैर बता दूँ आपको, जो सेलिब्रिटी से मिलने वाला सपना होता है ना वो बहुत कॉमन है और इंटरेस्टिंग सपना भी है, क्योंकि इसमें आपकी ना एम्बिशंस दिखाता है और डिज़ायर्स इच्छाएँ आपकी, या फिर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा होता है। अब देखो कौन से सेलिब्रिटी से आप मिले हो जो हमेशा विलन का रोल निभाता है या फिर अच्छा रहता है, जैसे उनका कॉन्फिडेंस लुक या फिर टैलेंट जो लोग पसंद करते हैं, ऐसे इंसान से मिले हो तो सिंपल है कि आप भी अपने अंदर वैसी ही क्वालिटीज़ चाहते हो और सक्सेस और रिकग्निशन की भी आपके अंदर इच्छा है, कि आप चाहते हो कि आपको रियल लाइफ में सफलता मिले, आपका नाम हो और इज्जत पाना चाहते हैं आप पूरी सोसाइटी में, तो ऐसे सपने इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं सपने में, तो इसका मतलब है कि आप रियल लाइफ में बाकी लोगों से अलग दिखना चाहते हैं और आपका एक बड़ा मुकाम, मतलब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ये बोल सकते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब एक ये भी है कि आप बहुत बड़ा सोचते हैं, आप चाहते हैं करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ या फिर आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू कीजिए और सपनों को सच करने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ चलाऊंगा आप लोगों के लिए गाने, रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जब भी मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ ना, मेरे मन में एक सवाल जरूर रहता है कि क्या मेरी सैलरी उतना दे पा रही है जितना मेरा ऑफिस आने जाने में खर्चा हो जा रहा है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, आने जाने में मेरा हर महीने कितना खर्चा होता होगा? तो इसमें ना एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे में ना बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई है कि एक आदमी की औसतन खर्चा जो होता है, आदमी मीन्स एक इंसान की औसतन जितना खर्चा होता है वो होता है 785 रुपये महीने का। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जो लोग शहर में काम करते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट खर्चा आता है 1044 रुपये जो ये सर्वे के थ्रू किया गया है, जबकि जो गाँव में काम करते हैं उनका महीने का खर्चा आता है 600 से 700 रुपये। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्त हैं कुछ लोग, वो दिन का 800 रुपये खर्च करके जाते हैं अपने ऑफिस, मतलब आना जाना करते हैं ऑफिस से। सोचो उनका कितना ज़्यादा खर्चा होता होगा। खैर बता दूँ आपको, फीमेल जो इतनी भी महिलाएं कर्मचारी होती है उनका औसतन खर्चा कितना आता होगा महीने का, सोचो ज़रा। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 533 रुपये खर्चा आता है, और अगर हम लोग बात करें कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस की तो उसमें आने जाने का खर्चा करीब करीब 616 रुपये आता है। अब ये जितने भी अमाउंट फिगर्स आए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के हैं जो कार पूल करके जा रहे हैं, या तो फिर पब्लिक सर्विसेज से जा रहे हैं, मतलब कभी मेट्रो ले रहे हैं कभी कुछ। बट मेट्रो में भी मुझे अगर घर से मेट्रो तक जाना तो 20 रुपये ऑटो का लगेगा, फिर उसके बाद मेट्रो से जाऊंगा तो 50 रुपये जाने का, मतलब 50 रुपये जाने का 50 रुपये आने का, 20 रुपये जाने का 20 रुपये आने का, कितना हो गया 70 रुपये एक साइड का, यानी कि 140 रुपये तो एक दिन के हो गए, तो फिर 10 दिन के तो 1400 रुपये यूं ही बन गए ना। पता नहीं क्या हिसाब लगाया। चलिए खैर, इन सब चीज़ों के बारे में और भी बातें होती रहेंगी, टेंशन नहीं लेनी हम लोगों को, गाने सुनने हैं। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

कोई साडे वांग करूगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूगा दिल नाले

0: सच सच बताना, आप लोग घर से जब ऑफिस पहुंच जाते हो उसके बाद आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? क्या घर में मतलब बैठ जाते हो, मूवी देख लेते हो, या फिर आप भी मेरे दोस्तों की तरह हैं जो जाते ही अपना टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते ही चला देते हैं बिग बॉस, बिग बॉस?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव हूं मैं आप सभी के साथ। देखो, मैं उन लोगों में से हूं जो बिग बॉस नहीं देखता। क्यों देखूं मैं किसी और की लड़ाई, क्यों देखूं मैं किसी और की जिंदगी के कलेश, जब मेरी ही जिंदगी में इतने सारे कलेश हैं। चलिए, मजाक है ये तो, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी जिंदगी भी अच्छी चल रही होगी, यही प्रे करते हैं। और इसी के साथ साथ बिग बॉस की जब बात आई है ना, तो वीडियोज आ रही सोशल मीडिया पर बहुत सारी, उनमें से एक वीडियो आई मेरे पास, उसको देखने के बाद मुझे बड़ा हंसी आई। मैं सोचा यार ये क्या हो रहा है इधर। नकुल ढुल नाम का एक शख्स गया है सोशल मीडिया पे, जो स्टोरी स्टोरी करके फेमस हो चुका है, एक लड़का वो और उसके साथ साथ एक लड़का गुल्लू, ये दोनों गए हुए हैं, मतलब बहुत सारे हैं और भी, मैरी कॉम भी है उसमें। अब क्या होता है, नकुल और गुल्लू में लड़ाई हो जाती है, पहले तो हीटेड आर्ग्यूमेंट, पहले तो तू तड़ा करके बात कर रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाथापाई पे उतर आए दोनों के दोनों, दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, लोगों को छुड़वा रहे हैं, लोग उनको छुड़वा रहे हैं। इतने में माही भी जाती है बीच में से अचानक चिल्लाते हुए, How dare you? मतलब उन्होंने चिल्ला के बोला, और मैं वीडियो देख रहा था, मैंने सोचा ये सब चीज़ें अगर मुझे देखनी ही है तो मैं अपने ऑफिस क्यों ना चले जाऊँ, ऑफिस में बस हाथापाई नहीं होती, बाकी सब कुछ देखने को मिल सकता है मुझे। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में तो देखने को मिल ही जाता है, जब बॉस पूछता है ये काम क्यों नहीं हुआ तो एम्प्लॉयज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, उन दोनों की लड़ाई देखने के बाद मुझे मैरी कॉम जी की याद आई, साइड में खड़े होकर चुपचाप देख रही थी, सोच रही होंगी कि अगर मैं एक एक पंच दोनों में मार दूं तो क्या होगा इन दोनों का। चलिए, ये सब चीज़ें मेरे मन में आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी साथ शेयर कर दूं, और ऐसे ही और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, रेडियो महारानी पर बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए एमसी स्क्वायर की आवाज़ में गाना चला रहा हूं, सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।
2: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

0: Kashyap.
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है.
2: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए. एंटरप्राइजिंग डीवाज एंड मिस्टर प्रदीप कुमार काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म पालम विहार गुरुग्राम सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से. और सबसे बड़ी खुशखबरी एंट्री बिल्कुल फ्री है. के साथ आइए डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट. स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है. बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285. एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर.

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी सोचा है कि जब हम कैब बुक करते हैं तो हमारे लिए वो सिर्फ एक राइड होती है, लेकिन किसी के लिए वही राइड अपने सपनों को पूरा करने का जरिया भी बन सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैब सर्विसेज की जो सिर्फ लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बात कर रहे हैं वोक कैब सर्विसेज की। तो आज मेरे साथ वोक से है एक फीमेल ड्राइवर, और सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम शुमाइला है।
0: ओके शुमाइला, आप कहाँ से हैं?
1: मैं नन्नगरी से हूँ।
0: नन्नगरी एग्जैक्टली किधर पड़ता है?
1: दिल्ली में।
0: सो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली हमारे साथ फरीदाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं और वोक से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, वोक के साथ आपको कितना टाइम हो गया?
1: मुझे वोक से जुड़े हुए 3 महीने हो गए।
0: और उससे पहले?
1: उससे पहले मैं आजाद फाउंडेशन में करती थी।
0: ओके, तो आपने ड्राइविंग कहाँ सीखी?
1: ड्राइविंग मैंने आजाद में सीखी थी, और वहीं पर ही मैंने आजाद में जॉब देते हैं महिलाओं को।
0: ओके,
1: वहीं से मैंने जॉब भी करी।
0: तो मतलब जब पहली बार ड्राइव की थी, कैसा कैसी फीलिंग थी वो?
1: मैं मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी कार भी चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे साइकिल ही नहीं आती थी।
0: अब आती है?
1: अब साइकिल नहीं आती, अब सीधा कार आती है।
0: अगर मैं बाइक पकड़ा दूं, बाइक स्कूटी कुछ भी, अच्छा वो नहीं चला पाओगे?
1: नहीं।
0: तो टू व्हीलर नहीं चला पाओगे, बट गाड़ी चला लोगे?
1: जी।
0: चलो, ये तो अच्छी बात है। आज तक सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा किया है?
1: मैंने सबसे फरीदाबाद गुड़गांव यही वाला ज्यादा करा है।
0: ओके, तो मतलब आप दिल्ली से पहले फरीदाबाद आते हो?
1: जी।
0: और फिर उसके बाद?
1: फिर उसके बाद राइड लेके गुड़गांव, गाजियाबाद, इन सब जगह पे जाते हैं।
0: ओके, और इसी के साथ साथ आपको जुड़े हुए टोटल कितना टाइम हो गया?
1: मुझे वॉक से जुड़े हुए 3 महीने हो गए।
0: तो वोक से हमारे साथ है सुमायला, और सुमायला जी से और भी ढेरों बातें करेंगे, मगर अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, गाने और बातें चलती रहेंगी। आप सुन रहे हैं 89.6। मैं हूं गौरव आपके साथ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमायला।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। गौरव हूं मैं आप सभी के साथ एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्स जो सिर्फ कैब नहीं चलाती बल्कि अपने सपनों को भी रफ्तार देती हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत कीजिए वो कैब सर्विसेज का, हमारे स्पेशल गेस्ट सुमायला का जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सुमायला, ड्राइवर बनने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी?
1: मैं कहीं आती जाती नहीं थी, घर में रहती थी। और जब से मैंने ड्राइविंग सीखी है तो मैं अब अकेले सब जगह ट्रैवल कर लेती हूँ।
0: अच्छा, अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ। बट इसके बाद बदलाव क्या आया लाइफ में आपकी?
1: मेरा बदलाव आया, एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया जो कि मेरे अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे सपने भी थे कुछ, तो मैं उन्हें पूरा करने के लिए भी ड्राइविंग में जुड़ी करा मैंने।
0: ओके।
1: और मैं उस कम्युनिटी से हूँ जहाँ पर लड़कियों को ज्यादातर गाड़ी सीखने के लिए मना करते हैं।
0: ओके।
1: के लड़कियाँ गाड़ी नहीं सीखती है, लोग सही नहीं है। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने सपोर्ट करा कि महिलाएं गाड़ी सीख सकती हैं, तुम जाओ हम तुम्हारे साथ हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है?
1: सबसे फेवरेट गाड़ी वैगनारी है, मुझे यही पसंद है।
0: नहीं, अगर कोई ऐसी गाड़ी जो आप चाहते हो कि लाइफ में आगे आने वाले टाइम पे मैं गाड़ी लूंगी, ये वाली कभी जिंदगी में?
1: थार।
0: थार। तो थार लेके फिर ये सड़क पे गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये फिर उड़ाएंगे, क्या हम ऐसे कह सकते हैं? चलिए, मजाक तो होते रहेगा और भी बातें होती रहेंगी, मगर अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए। रेडियो महारानी पर वोक से जुड़े हैं हमारे साथ कैब ड्राइवर सुमायला, और इनसे और भी ढेरों बातें होंगी मगर थोड़ी देर बाद।

0: अब आप सब लोग ना एक चीज इमेजिन करिए, स्टीयरिंग व्हील हाथ में, कॉन्फिडेंस चेहरे पर और मंजिल अपनी नजरों में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आज रेडियो महारानी पर मिलते हैं वो कैब सर्विसेज की एक टैलेंटेड ड्राइवर से, उनका नाम है सुमायला, जो कि मेरे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। तो सुमायला, जब आप ड्राइवर बनी तो सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि करियर जब इसको बनाते हैं हम लोग कैब ड्राइवर, जो कि एक करियर होता है, मेल्स में बहुत देखा जाता है, फीमेल्स में बहुत कम देखा जाता है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या रिएक्शन था कि मैं कैब ड्राइवर बनने जा रही हूँ?
1: सर, मैं तो खुश थी कि मैं एक महिला हूँ और मुझे ड्राइविंग करने का मौका मिल रहा है और मैं चलाऊँ।
0: ओके, और फैमिली का क्या रिएक्शन था?
1: मेरे मदर का तो बहुत अच्छा रिएक्शन था कि मेरी बेटी कार चलाएगी और क्या कहते हैं, हाँ, सपनों को भी, अपने भी पूरा सपनों को करेगी और हमारे भी, और हमें भी गाड़ी में घुमाएगी।
0: तो आपने कभी बोला नहीं, चलो मम्मी आपको गाड़ी सिखा देती हूँ?
1: मेरी मम्मी कहती है कि मैं भी सीखूंगी।
0: अच्छा, ऐसा मेरी मम्मी भी कहती है, मैं मना कर देता हूँ मम्मी को।
1: नहीं, मैंने मना नहीं करा मम्मी को,
0: मम्मी को इसलिए मना किया, मैंने कहा आप क्या करोगे, आप गाड़ी चला गए, हम लोग हैं ना चलाने वाले।
1: मैंने अपनी मम्मी से कहा जब हम आपने हमें सिखाया तो हम आपको जरूर सिखाएंगे।
0: क्या बात है, और ऐसे ही और भी ढेरों बातें होती रहेंगी रेडियो महारानी पर। बट हाँ, इससे पहले कि मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, रिश्तेदारों ने क्या कहा?
1: रिश्तेदारों ने सबने मना करा कि लड़की के ऊपर ड्राइविंग सही नहीं रहती, ये ज़्यादातर लड़कों पे ही अच्छी लगती है ड्राइविंग, तुम कंप्यूटर सिखा दो या कुछ और सिखा दो। लेकिन मेरी मम्मी ने ये कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को यही सिखाऊंगी। हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ और भी सवाल जारी रहेंगे, बट इस गाने के बाद। रेडियो महारानी पर मैं हूँ गौरव, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमायला फ्रॉम वो कैब सर्विसेज।

0: जब हौसले बुलंद होना तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। और आज हम बात कर रहे हैं वो कैब सर्विसेज की ड्राइवर सुमैला से, जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रही हैं। तो सुमैला, एक सिंपल सा सवाल कि पहली सैलरी, वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: मेरी जब पहली सैलरी आई, मुझे बहुत ही खुशी हुई, और सबसे ज्यादा मेरी मदर को हुई कि मेरी बेटी की ये पहली कमाई है।
0: तो उन पैसों को क्या किया?
1: उन पैसों का क्या करा?
0: कपड़े ले लिए।
1: कपड़े नहीं लिए, मम्मी को दिया मैंने फर्स्ट सैलरी के, आपका हक है।
0: ओके।
1: क्योंकि आपने मुझे निकाला जब ही मैं इस मुकाम पर आई।
0: ओके।
1: तो सबसे पहले आपका हक बनता है, आप रखिए सैलरी।
0: क्या बात है। और मतलब फैमिली में और भी लोग होंगे?
1: मेरे फादर भी बहुत खुश हुए कि मतलब मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटा है।
0: क्या बात है। बट मैं बोलना चाहूंगा, बेटी बेटों से लाख गुना ज्यादा

0: जी।
1: और इसी के साथ साथ पहली राइड का एक्सपीरियंस कैसा था?
0: मेरी फर्स्ट राइड का थोड़ी इमोशनल सी थी कि मतलब कैसी जाएगी राइड मेरी, लेकिन बट अच्छी गई थी राइड। मैम ने भी मुझे सपोर्ट किया कि बेटा आप कर सकती हो, फर्स्ट राइड है, जाओ।
1: बिल्कुल। और मैं अब एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, मान लेते हैं आप कल को एक किसी भी एक विमेन को आप अपने साथ बिठाती हैं
0: जी,
1: और अगर वो बड़ी इंपेशेंट है कि मुझे जल्दी पहुंचा दो मुझे, तब आप क्या रिएक्शन, मतलब आप क्या बोलेंगे उसे?
0: वुमेन लेडी एक सेफ्टी के लिए है, तो उसको हम सेफली पहुंचाएंगे, उसे समझाएंगे कि मैम हम ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकते, आपको सेफ्टी पहुंचाना है ना, तो इसलिए हम स्लो ही चलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है यहाँ पर। जितने भी फरीदाबाद के लिस्नर सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना हमारे साथ वो कैब सर्विसेज की तरफ से है सुमाइला।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरड

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं बता गया तो?
2: नहीं, क्यों? क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो प्यार।

आपको पता है एक नए टाइप का स्कैम आ गया मार्केट में, और ये स्कैम बहुत ज्यादा नुकसानदायक है सभी लोगों के लिए, और इस स्कैम का नाम है व्हाट्सएप नो स्कैम, मींस नो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको अगर आपने गलती से भी नो लिखकर भेज दिया तो क्या होगा आपके साथ, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, आपके पास हो सकता है मैसेज आएगा किसी बैंक की तरफ से, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और हो सकता है आपने ट्रांजैक्शन ना भी किया हो तो आपके पास ना एक मैसेज आ जाएगा, और मोस्टली जब ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा तो मैसेज आएगा आपकी प्रेफर्ड बैंक से, जिस भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और उसमें लिखा होगा कि आपने क्या ये अमाउंट डेबिट किया है, येस और नो। अब आपको लगेगा ऐसा तो मैंने कोई अमाउंट करा ही नहीं है, मैंने किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं करे वैसे, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो नो वाला लिंक होगा ना वो आपको कहीं और ले जाएगा, फिर वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स डालिए, और ऐसे ही हड़बड़ी में इंसान अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल देता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पर आए हुए ऐसे मैसेजेस से बच के रहें, और अगर आपको कोई बोलता है इस लिंक पर क्लिक करें अगर आपने पैसे ये ट्रांजेक्शन नहीं करी है, या फिर बोलेंगे कि इस फाइल को ओपन कीजिए, बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसे टाइम पर आपको मतलब सबसे पहले आपको उस नंबर को ब्लॉक करना है और रिपोर्ट भी करनी है, और अगर आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है जो आपको पता ही नहीं है, और आपके पास व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज आता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है, मतलब जिस भी बैंक पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस भी बैंक से आप लेन देन करते हैं, आप उनको कॉल कीजिए। आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उसका नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप पता करिए कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, उनको कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई भी है या फिर नहीं, और अगर पैसा सच में कट गया है तो फिर उसके बाद आपको कॉल करना है 1930 पर, और जितने भी अनवेरीफाइड नंबर्स हैं ना उन सबके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते रहिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। गौरव है मेरा नाम, बातें और गाने यूं ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

लोग सपने में कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं? मतलब ऐसा लगा हो आप लोगों को कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ घूम रहे हो सकता है पंकज त्रिपाठी के साथ घूम रहे हो आप मिर्जापुर से। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। एक्चुअली में क्या होता है, देखो सपने आते हैं ना तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है। हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल मतलब हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल मतलब भी हो, क्योंकि स्वप्नशास्त्र भी होती है कुछ चीज़। खैर बता दूँ आपको, जो सेलिब्रिटी से मिलने वाला सपना होता है ना वो बहुत कॉमन है और इंटरेस्टिंग सपना भी है, क्योंकि इसमें आपकी ना एम्बिशंस दिखाता है और डिज़ायर्स इच्छाएँ आपकी, या फिर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा होता है। अब देखो कौन से सेलिब्रिटी से आप मिले हो जो हमेशा विलन का रोल निभाता है या फिर अच्छा रहता है, जैसे उनका कॉन्फिडेंस लोग या फिर टैलेंट जो लोग पसंद करते हैं, ऐसे इंसान से मिले हो तो सिंपल है कि आप भी अपने अंदर वैसी ही क्वालिटीज़ चाहते हो और सक्सेस और रिकग्निशन की भी आपके अंदर इच्छा है कि आप चाहते हो कि आपको रियल लाइफ में सफलता मिले, आपका नाम हो और इज्जत पाना चाहते हैं आप पूरी सोसाइटी में, तो ऐसे सपने इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं सपने में तो इसका मतलब है कि आप रियल लाइफ में बाकी लोगों से अलग दिखना चाहते हैं और आपका एक बड़ा मुकाम, मतलब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं ये बोल सकते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब एक ये भी है कि आप बहुत बड़ा सोचते हैं, आप चाहते हैं करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ या फिर आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस पर वर्क करना शुरू कीजिए और सपनों को सच करने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ चलाऊंगा आप लोगों के लिए गाने, रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Oh, so-

0: अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करते और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों वर्कआउट करना चाहिए और आप चाहते हैं कि आप बस शुरू करना चाहते हैं कहीं से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि रेडियो महारानी पर आपका जिम ब्रो आ चुका है आप सभी के साथ। अब जिम ब्रो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ जिम ब्रो, रेडियो का गौरव, वही है जिम ब्रो।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और अगर आपने कभी भी जिंदगी में वर्कआउट नहीं किया है तो मैं आप सभी को कुछ गाइड करने वाला हूं, और ये गाइडिंग ना मतलब ये गाइडेंस आपको अच्छी लगेगी। देखो, एक बिगनर के लिए सबसे पहले 2-3 महीने कंसिस्टेंसी रखनी है। सबसे पहली चीज जो रखनी है वो कंसिस्टेंसी है। जाना है आप लोगों को हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो जाना ही जाना है। उसके बाद दूसरी चीज है करेक्ट फॉर्म। ये नहीं कि दूसरे को देख रहे हो कि 10 का नंबर उठा रहा, हम भी उठा दें, नहीं, अभी नहीं करना आपको ये। और इसी के साथ साथ रिकवरी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन वर्कआउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे गए, ट्यूसडे गए, वेंसडे नहीं गए, थर्सडे फ्राइडे गए, सैटरडे गए, संडे नहीं गए, तो 5 दिन आपका हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अपना वर्कआउट रूटीन स्प्लिट करना है, और ऐसे ही पहले 4 से 6 हफ्ते यानी कि 1 से 1.5 महीना आपको वर्कआउट में अपर लोअर स्प्लिट करना है, जैसे अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए उसे। कंपाउंड मूवमेंट्स पर ध्यान देना, जैसे कि आपको स्क्वाट्स करने हैं, डंबल चेस्ट प्रेस करनी है, लैट पुल डाउन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखो पहले, उसके बाद आप वर्कआउट करना शुरू करो। और उसके अलावा वर्कआउट करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 7 से 10 मिनट का वार्म अप। अब इसमें आपको वार्म अप में क्या करना है, आपको या तो 5 मिनट ट्रेडमिल पे चल लो, या फिर आप खड़े होकर अपने हाथ पैर हिला लो अच्छे से ढंग से, फिर उसके बाद आपको नेक रोटेशन करनी है, आपको आर्म्स रोटेशन करनी है, आपको हल्के से हल्का डंबल उठाकर आपको 2-3 सेट करने हैं। अब इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। और मेन वर्कआउट आपका 40 से 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बट वर्कआउट के बाद आपको बॉडी को कूल डाउन भी करना है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट और हाइड्रेशन। प्रोटीन इंटेक सही रखिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, और ऐसे ही वर्कआउट करते रहिए, और धीरे धीरे आप भी जिम ब्रो के बराबर पहुँच जाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, गाने और बातें चलती रहेंगी, पर मैं आप सभी के साथ रेडियो महारानी सुन रहे हैं कुछ हटके।

बिग बॉस के बारे में बात कर ली है, और अगर अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी से पहुंच जाइए, वरना सच में बिग बॉस का फोन आ जाएगा, यानी कि मम्मी पापा या फिर आपकी मिसेज का फोन आ सकता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। भाई जल्दी से घर पहुंच जाओ, फिर बाद में मत कहना कि गौरव तूने तो बताया ही नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं गौरव आपके साथ, और आज है फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि, और फोर्थ डे भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। माँ कुष्मांडा की पूजा हुई है आज, और उसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि देखो नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं, और मतलब ख़त्म होने में 6 दिन बचे हैं, और दशहरा में बोल दूं 6 दिन बचे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, 20 तारीख आने में 6 दिन बचे हैं, और 20 तारीख को छुट्टी होगी आप लोगों के पास, यानी कि एक लंबे वाला वीकेंड आने वाला है आप लोगों के पास फिर से। देखो सैटरडे संडे काफ़ी सारे लोगों की छुट्टी होती है, मंडे को कर लेना, नवरात्रि में नवमी की भी छुट्टी होती है काफ़ी सारे लोगों की, और ट्यूसडे को तो दशहरा है ही है, तो लंबे वाला वीकेंड आ रहा है आप सभी के लिए। बट उससे पहले आप लोग अगर अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं तो अपने घर में क्या बहाना देना है वो आपके ऊपर है, बट घर जल्दी पहुंच जाना है ये आप लोगों को प्रण लेना है। और इसी के साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूं आज, जो कि सब पब्लिक के साथ शेयर करना चाहता हूं। वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट ऑलवेज ट्रू। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ज्ञान सोशल मीडिया से मत लीजिए, चाहे फिर वो फिटनेस से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जिनको पैसा मिलता है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का। कल को उनको कोई 10,000 रुपये देना और कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए बोले कि देख इस प्रोडक्ट को बेच दे और देखो हम 10,000 रुपये देंगे, वो उसकी भी वीडियो बना देगा, उसके 10 फायदे बता देगा कि इसमें नाइसिनामाइड है, ये है वो है, और आपकी स्किन ग्लो कर जाएगी, बट कुछ होगा नहीं उससे। तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ देखते हैं उस पर आँख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, एंड दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी। वापस आएगी गीत विदेश बाजियां, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बात हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आपने ही बता दिया था?
2: नहीं, क्यों? क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो प्यार।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, मैं हूं आपकी इश्क बाजिया की इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर आपका अपना शो इश्क बाजिया। और अब वक्त है उस हिस्से का जहां थोड़ी सी बात होगी मोहब्बत की, थोड़ी सी जिंदगी की और थोड़ी सी उन फीलिंग्स की जिन्हें हम नॉर्मली बोल नहीं पाते, क्योंकि ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। और आज की शाम की शुरुआत करते हैं अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर आ गया है और ये महीना मेरा बहुत ही पसंदीदा महीना होता है। मुझे लगता है अक्टूबर का अपना ही मूड होता है यार। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक, शाम को आसमान का थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाना, चाय कॉफी का अचानक ज्यादा अच्छा लगना और बिना किसी खास वजह के भी मन का थोड़ा अच्छा हो जाना, शायद मौसम का असर है या शायद अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं है, कभी अच्छी कॉफी भी काफी है, कभी कोई फेवरेट गाना, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी किसी दोस्त का अचानक फोन और कभी बस बालकनी में बैठकर ठंडी हवा को महसूस करना। लेकिन आज हम अपनी जेनरेशन में एक फनी सी चीज करते हैं, हमें खुशी चाहिए लेकिन वो भी थोड़ी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट सनसेट चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट करियर, परफेक्ट वीकेंड, और अगर ये सब एक साथ नहीं मिला तो लगता है लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ है। जबकि शायद खुशी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, शायद अक्टूबर की तरह ही है, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा म्यूजिक और बस मूड बन गया। तो आज इस अक्टूबर में थोड़ा स्लो नहीं बल्कि थोड़ा मोर अलाइव होने की हम बात करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज है, हर दिन उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये है हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु 70 प्लस एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15th अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM
0: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु बिगर बेटर बोल्डर।

वेलकम बैक। शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आपने नोटिस किया है, हम हैप्पीनेस को भी प्रोजेक्ट बना देते हैं। मंडे को सोचते हैं फ्राइडे आएगा तो खुश होंगे, फ्राइडे को सोचते हैं वीकेंड आएगा तो खुश होंगे, वीकेंड पर सोचते हैं वेकेशन आएंगे तो खुश होंगे, वेकेशन में सोचेंगे काश रोज ऐसी लाइफ होती, और जब रोज ऐसी लाइफ नहीं होती तो वापस मंडे से शिकायत शुरू। मतलब हैप्पीनेस भी हमारी वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहती है, और शायद इसी चक्कर में जो हमारे पास है हम उसका मजा नहीं लेते हैं। अक्टूबर की शाम को ही देख लीजिए, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई लाइफ चेंजिंग अनाउंसमेंट नहीं आया, बस हवा थोड़ी अच्छी लगने लगी, सूरज थोड़ा जल्दी नरम हुआ और सड़क किनारे पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे, लेकिन सीन पूरा सिनेमैटिक हो गया। शायद हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिनेमैटिक होना चाहिए, बिना किसी रीजन के अच्छे कपड़े पहन लेना, अकेले कॉफी पीने निकल जाना, अपने पसंदीदा गाने पर फुल वॉल्यूम में गाना, किसी दोस्त को अचानक कॉल करके कहना चल आज मिलते हैं, क्योंकि हर खुशी के पीछे कोई बड़ी वजह हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी आज मन किया भी एक परफेक्टली गुड रीजन है, और आज की जनरेशन को शायद ये परमिशन खुद को देनी चाहिए कि हर चीज प्रोडक्टिव होनी जरूरी नहीं, हर दिन सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं, हर मोमेंट इंस्टाग्राम वर्दी होना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, और शायद वही सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। मैं हूं गीत, और अक्टूबर की इस खूबसूरत शाम में एक और खूबसूरत सा एहसास लेकर ये गाना सुनते हैं।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम

हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।

चीज बहुत प्यारी सी लगती है। ये महीना आपको थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक बना देता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां। अब ये रोमांस सिर्फ किसी इंसान के साथ होना जरूरी नहीं, कभी अपने शहर से प्यार हो जाता है, कभी शाम के आसमान से, कभी किसी पुराने गाने से, कभी सड़क किनारे लगी छोटी सी चाय की दुकान से भी, और कभी कभी बस अपने आप से। हम इतने बिजी हो गए हैं ना कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन हाथ में है, ईयरफोन्स कान में है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। दो मिनट खाली बैठो, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी अक्टूबर की हवा में फोन थोड़ा नीचे रख कर देखिए, शायद आपको पता चले कि आसपास कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। किसी पेड़ पर नई कोपल, किसी घर की बालकनी पर रखे पौधे पर फूल, सड़क पर शाम की रोशनी, किसी के हाथ में गर्म चाय, और फिर शायद आप सोचें, यार लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बस इसे देख नहीं पा रही हूँ। हमें हर समय कुछ हासिल करने की जल्दी रहती है, लेकिन कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए भी होते हैं। तो इस अक्टूबर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस कहीं जाइए, अपना पसंदीदा गाना लगाइए, कुछ अच्छा खाइए और बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, कभी कभी इसे थोड़ा सा फील भी करना पड़ता है। मैं हूँ इश्क बाजियां के गीत और आप सुन रहे हैं इश्क शायराना रेडियो महारानी पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली की। तो अक्टूबर से मेरी सबसे फेवरेट बात पता है क्या है? ये महीना हमें कोई बड़ी स्पीच नहीं देता, बस मौसम बदल देता है, हवा बदलती है, सुबह बदलती है, शामों का रंग बदलता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन मूड हमारा थोड़ा थोड़ा बदल ही जाता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर चीज को ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी अपना रूटीन बदल कर देखिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, किसी दिन रास्ता बदल कर जाइए, नया गाना सुनिए, किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिए जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, किसी नए कैफे में बैठकर कॉफी पीजिए। छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी चीजें तो दिन को दिन बनाती हैं, और शायद यही अक्टूबर का सीक्रेट है। नई शुरुआत हमेशा जनवरी की पहली तारीख को नहीं होती, कभी वो अक्टूबर की किसी शाम को भी हो सकती है, किसी रैंडम डिसीजन से, किसी अचानक निकली ड्राइव से, किसी नए गाने से, किसी नए आइडिया से, या बस इस थॉट से कि चलो आज थोड़ा अपने तरीके से जीते हैं। तो अगर अक्टूबर की हवा आज आपके शहर में भी थोड़ी बदल गई है तो उसे सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसके साथ अपना मूड भी बदल दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा प्यार कीजिए, और सबसे जरूरी, खुश रहने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह मत ढूंढिए, क्योंकि कई बार एक अच्छी शाम, एक अच्छा गाना और आपके अपने फेवरेट इंसान से दो बातें, बस इतनी सी चीजों में भी पूरी कहानी बदल जाती है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना। अक्टूबर अभी अभी नया है तो देखते रहिए, हो सकता है इस महीने आपकी जिंदगी भी कोई खूबसूरत सा नया सीन आपको दिखा दे। तो अब इस सीन में थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करते हैं। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियाँ यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

से स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती। स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे, यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलेसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिस्से

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे ही हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान,

व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में, क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की।

के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, है शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को